हाँ, सबसे बड़ा रुपया रुपया तो होना ही चाहिए जीवन में, उसे अपना आगे बढ़ाने के लिए, काम में लगाने के लिए, प्रयोग करने के लिए रुपया अवश्य जरूरी है। ये सुंदर सा गीत स्पेशल स्पेशल मांग किया गया है।

मेरा बालम इतना दूर कि उनसे नैना लड़ गए। उसके बाद आपके लिए है ये सुंदर सा गीत एक बार फिर यहाँ से फिल्म जादू से आपके लिए पेश करेंगे। फिल्म जादू ने कहते हैं एनएफएफ तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म लता जी के आवाज में।

हो प्यार की हो गई जीत, फिल्म जादू से यहाँ से हमने श्रवण की है और कह रहा है। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, हम मंजिल पे ना पहुंचे तो उसे रास्ता नहीं कहते, और दो चार कदम चलने को चल

जिंदगी भर साथ निभाना उसे ही सफर हम सफर कहते हैं। कल कोई मुझे याद करे क्यों क्यों कोई मुझे याद करे, कल कोई मुझे याद करे क्यों कोई मुझे याद करे, मुसाफिर जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का

यहाँ से हम चले दुनिया के मजा ले ले, दुनिया के मजा ले ले मेरे दोस्त, दुनिया के मजा ले ले। फिल्म का नाम बहार, इस बार है शमशाद बेगम जी की आवाज में।

सुरैया जी के आवाज में यहाँ से हमने सुने हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाते क्यों हो, दो पल की जिंदगी के दो पल की जिंदगी देकर दो पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है। और जो किस्मत में नहीं होते तो किस्मत उसे मिलाते क्यों है।

शमशाद बेगम जी की आवाज में स्पेशल स्पेशल स्पेशल प्रोग्राम बन गया है आपके लिए। यहाँ से जिंदगी का सच बस इतना है मेरे दोस्त, जो अपना हो वही सबसे सबसे ज्यादा रुलाता है। और जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना जिंदगी में ये बात कि कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझ में आए ना मेरा दोस्त? और कहते हैं कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है, कि जिंदगी और किस्मत दोनों खफा है। जब बुरा वक्त चलता है तभी तभी हम तन्हा हैं। बाकी हिम्मत ना हारो, तन्हा में आप तन्हा जब होते हैं तो आपको सोचने का वक्त भी मिलता है और वहीं से आप बढ़ते हैं, ग्रोथ होते हैं।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम सावन 1959 के पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ मेरे दोस्त, ऑल दोस गोल्स। इसमें आप सुनते होंगे कि यह साज और संगीत, गीत का धुन जो है, जो इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया गया है, कितना अलहदा है, कितना सुनहरा है, कितना अच्छा लगता है वे सुनने के लिए। तो यहाँ से इस बारे आपके लिए फिल्म आर पार से निकलती फिल्म फैफ तक के शमशाद बेगम जी की आवाज में

title song film aar paar 1954 ke picturize kiya film Shamshad Begum ji ke awaaz mein sune. Star cast isme hai Shama, Gurudat, Shashikala aur Kumkum ji. और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ से हम बता दें आपको कि जिंदगी जिंदगी ना किसी से नाराज होकर जियो, जिंदगी में ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज करके जियो, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी वाकई में पलक झपकते में यूं ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि जिंदगी बहुत छोटी है, सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहा कर, खुश होकर जियो।

0: 1946 के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्त। म्यूजिक डायरेक्टर इसका है नौशाद जी, डायरेक्टर है महमूद खान और गाने वाला है सुरेंद्र और नूर जहान।
1: दुनिया मेरी जवान है, आवाज दे कहाँ है।
0: यहाँ से जो आप सुन रहे हैं उस जमाने के लोग, तो उनका याद जो है वो ताज़ा हो गए होंगे, तो ये भी आपको बधाइयाँ हैं कि पुरानी यादें जो अच्छे अच्छे यादें उसे ताज़ा हम कर ले तो कितना अच्छा होगा, रौनक हो जाता है चेहरे।

0: हाँ बता दो, याद रखोगे कि भूल जाओगे, लता जी के आवाज में।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

तेरे हमदम मेरे करीब आओ, और उससे पहले हम सुने उलझन सुलझना, सुना दी हमको आशा भोसले जी, फिल्म का नाम ढूंढ, फिल्म का नाम ढूंढ। 1983 तक में ये पिक्चराइज किया गया है। मंजिलों का इंतजार नहीं, मंजिलों का इंतजार नहीं, सफर का मजा लीजिए, हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते पल के साथ खुद को नया कीजिए। दो लम्हे के बीच की, दो लम्हों के बीच की हर घड़ी का नशा कीजिए। हंसते हंसते गाते जीते, हंसते गाते जीने की हर वजह ढूंढ लिया कीजिए। बहुत बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी, बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी, उस रब का शुक्र अदा कीजिए। रोते रोते रहे जाने कुछ ना होगा, वक्त के साथ इसे बेहतरीन कीजिए। वाखनित ऑफ द बस्टेमिंग, वाखनित ऑफ द बस्टेमिंग, खनित फान द रेस, खनित फान द रेस, फरन्यू फरन्यू योरसेल्फ मिट एलक फॉर बे खांत मोमेंट। खनित फरन्यू ए खनित, फरन्यू योरसेल्फ मिट एलक फॉर बे खांत मोमेंट, खनित फान एलक मोमेंट टुसन ट्वी मोमेंटन, फिंड अले रेडनन om een gelukkig leven te leiden. Het leven wordt ons met grote moeite geschonken, God zij dank. Er zal niets veranderen als je blijft huilen. Er zal niets veranderen als je blijft huilen. Maar maak er met de tijd het beste van.

दर्द भरे गीत, दर्द भरे गीत हमने सुने मोहम्मद रफी जी की आवाज में। हकीकत में गरीबों का जीना भी क्या है जीना।

मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

सदा रहे हैं, सदा रहेगी, रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात की कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

हाँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में। चलिए अगला गीत हैं पेश करने वाले हैं इस तरह से।

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता है इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, ठहरो तुम। फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

माइती मुकेश, माइती मुकेश और साथ ही मैं आशा जी आपको मिल के सुनाए हैं ये गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ। तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है। चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमने चून कर ये गीत रखे हैं। जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत इस तरह से।

मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ ऑफ मिलियंस और लता जी सादी और शानदार गीत हमने पेश किए, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

रफी साहब और शारदा जी मिलके आपको ये द्वेत सुनाए जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माइती मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जयकिशन के साथ। पर कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम, बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद अजीज़।

मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निगदी सेफ न सस्त, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से है।

मित्रों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मित्रों मन की शांति भंग हो जाती है। आप रिश्ता नहीं रह पाते हो, हमेशा टेंशन में आप रहते हो। भाई बहनों, हमेशा टेंशन में तो व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जब आप अशांत रहते हो तो घर में परिवार के साथ चाहे जहां भी हो आप हमेशा टेंशन में रहते हो और बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो या गुस्सा कर लेते हो। मित्रों, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने आप को संभालो और आगे बढ़ते रहो।

दोस्तों, तन की सुंदरता ध्यान करना, तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है और जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। मित्रों, इसीलिए मनुष्य का स्वभाव यानी मनुष्य का आदत स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए।

मित्रों, कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे मित्रों, उतना ही खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे जिंदगी में। मित्रों, जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। आप खुद जानते हो मित्रों, आप इसमें गलत फहमी ना लावें कि हम नहीं जानते, हम ना जानत रहेली। खबरदार, सब चीज तो जाने हैं, फिर भी ताल मटोल कर रहे हैं। अपने कर्म को सुधारो मित्रों, कर्म को सुधारो, यही सबसे बड़ी बात है मित्रों, कर्म को सुधारना चाहिए।

मित्रों, भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है। मित्रों, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मित्रों, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है, मुनि के समान है, संत के समान है। मित्रों, ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

साथियों, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, जिसमें भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश होने पर भी वो अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता। मित्रों, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी या भक्त की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। मित्रों, अचल होती है, डगमग नहीं होवत है। जैसे आप अपने जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में तो बहुत अच्छी बात है, अपनी भक्ति करते रहना। मित्रों, भक्ति करते रहना।

प्रेमी भाई बहनों, बड़े से बड़े संसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में यानी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। मित्रों, स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे। वाह वाह, क्या बात है रे, क्या बात है। मित्रों, तो आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे लोग रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे मित्रों, तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे चापलूसी लोगों से बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत चौकस रहना चाहिए। मित्रों, मित्रों, एक भगत सांवरिया के पास बैठकर क्या सुन

मित्रों, कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते ना, या करते हैं पता नहीं, आप खुद जानो। मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। तो गधे को घोड़ा आप नहीं बनाते हैं ना। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है मित्रों, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप भी ऐसे हैं, खबरदार। मगर मुझे पता है आप ऐसे नहीं हैं, जानता हूं मैं। भगवान कहते हैं मित्रों, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना। विशेष करके लड़की लड़कियों जवान है ना, मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे, जीवन खराब कर देंगे, खबरदार पास हो गए। तो मीठी मीठी बातों में कभी मत फंसना मित्रों, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं मित्रों, बहुत करीब होते हैं। वही लोग आपको ज्यादा चोट पहुंचाएंगे, बहुत ज्यादा। मित्रों, मैं आपको इस भजन के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूं। जो लोग मंदिर जाते हैं, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग जो मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं और कहां कहां ये पूजा स्थल पर जाते भी हैं, तो उन लोगों से हम ये कहना चाहता हूं कि इस भजन को सुनिए। अगर आप इसी श्रेणी में पढ़ते हैं, लागू हैं, तो जरूर सुधर जाइए। और अगर आप इस लाइन में नहीं हैं, तो आगे चलते रहो, चलते रहो।

साथियों, मैं इस भजन के माध्यम से उन लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ जो इस भजन में बतलाए हुए श्रेणी में पढ़ते हैं। आप बड़े ध्यान से

मैया जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहां जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं हूं आपका सेवक संजय। और आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं जो बीमार है भगवान से यही कामना रखते हैं कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे, यही प्रार्थना है मेरा। जिनका घर एक नया शिशु ने जन्म लिए है तो उनको बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें भी बहुत सा बधाई और शुभकामनाएं प्रस्तुत किया जाता है। और जहां अब तैयारी हो रहा है नौकरी की ओर जाने के लिए तो कहने के बाद ये हो जाता है कि आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। और ये मत भूलना, गांधी जी ने क्या सुनाए थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ।

तैयारी कर रहे हैं स्कूल के ओर बढ़ने के लिए, तो ये कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। और ये आप अवश्य जानते हैं कि ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है। ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है, सबसे बड़ा संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, और सबसे अच्छा सुरक्षा विश्वास, और सबसे बढ़िया दवा हंसी। तो आप हंसते भी रहना, क्योंकि कहा गया है सबसे बड़ा दुआ उसी को। सबसे अच्छा सुरक्षा, जिसे हम विश्वास से जानते हैं, और ये विश्वास कभी खोना नहीं, क्योंकि कहते हैं नीदरलैंड्स में ना कि फर्त्रवन राखे मार एन केर क्वाइट।

और कहा जाता है कि सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि को, क्योंकि सबसे अच्छा हथियार भी कहलाया जाता है और यह हथियार धैर्य है। तो धैर्य से काम करना, जो हमारे देश में आए हैं सफर कर लिए, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

कहते हैं कि 2025 में फ्रीडस पैलेस मधुरुदम वंदल तख्त दौर द सेंट्रम जो स्केवनिंग का पीर द स्काइव्यू जो स्केवनिंग पे है कैक दैन और जो नेशनल मोन्यूमेंटन और आये होटल हाक्से तोरन लंगे फोरहाउट हेट प्लेन ये सब जो 2025 में कहलाया गया है द मेज बसोख्त zienswaardigheden in Den Haag.

ये सुंदर सा गीत सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो अपने नानी के अंतर्गत ये सुनाए। क्यों ना हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं।

ये सुंदर सा गीत जो बच्चे ने और जाकर के बच्चे के अंतर्गत रखा गया, सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। दोस्तों सुनने वालों, ये बात मत भूलना, हम रहते हैं हॉलैंड एक सुंदर देश में, पर अपना संस्कृति, सभ्यता और भाषा को भूलना नहीं चाहिए। देखा जाए कि 150 साल से ज़्यादा हम सब भारत को छोड़कर के सूरीनाम गए और सूरीनाम से फिर हॉलैंड और भी कितने देशों में जा कर के हम सब बसे हुए हैं, पर अभी तक हमारा सभ्यता, संस्कृति और भाषा में बदलाव नहीं आए हैं। तो क्यों ना एक और सुंदर सा गीत के ओर बढ़ते हैं।

था टमाटर बड़े मजेदार। दोस्तों ये गाना हम चुन चुन के रखे हुए हैं ताकि आप इस पे ध्यान दें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या हम अपने बच्चों को हॉलैंड में रह करके भी अपना भाषा

0: कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं और कुछ मैंने बच्चों के अंतर्गत में गाना चुन चुन के रखे हुए हैं। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
1: सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। बच्चों के गाने तो बहुत सारे हैं और जब हम बचपन में स्कूल जाना शुरू करते बच्चे प्ले स्कूल हिंदी में कहते प्ले स्कूल शिशु निकेतन स्कूल तो वहाँ पर सबसे पहले एक गाना और सिखाया जाता है।
0: तो गाना का बोल क्या है?
1: मछली जल की रानी है।
0: सबसे पहले ये गीत सिखाया जाता है बच्चों के?
1: हाँ जी।
0: तो हम क्यों ना वही गीत की ओर बढ़ते हैं?

0: गीत सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है ना?
1: ये गीत और है चंदा मामा दूर के।
0: तो हम क्यों ना ये गीत जो सूरीनामो में भी सुबह में रेडियो पे भी चलाया जाता था, क्यों ना हम लोग यहाँ भी चलाते हैं और चंदा मामा दूर की।

0: जो सभी बच्चे के लिए ये सुंदर सा गीत बबली जी, ये गीत पे सुन करके आपको कुछ और संदेश रखना है?
1: हाँ जी, थोड़ा सा संदेश है। इन गीतों में हमें ये संदेश मिलता है कि जो अपने घर से दूर हैं, विदेशों में रहते हैं या अपने माँ बाप से दूर हैं, तो लिखने वाले ने धरती को माँ कह दिया और चंदा को मामा कह दिया, और जो बहनें दूर हैं वो चंदा को अपना भाई मानती हैं।
0: तो चंदा को अपना भाई मानती है। देखा जाए कि इस पे जब हमारे जब शादी होता है ना,
1: हाँ जी,
0: तो शादी होता है तो भाई जो अपना बहन जब माढ़ों में ब्याह होता है तो अपना बहन के, और जब जा कर के पंडित हाथ पे हाथ धरवा करके और उस पे जल छोड़वाते हैं ना भाई से,
1: हाँ जी,
0: तो भाई वहाँ कहते हैं अपने बहन से कि जा, तेरा शादी आज हो रहा है, मैं इस बात पे ध्यान रखूँगा कि अगर आपके आगे में जा कर के बच्चे होंगे तो हम आपके बच्चों पे ध्यान देंगे, और बच्चा भी हो जाता है पर समय रुकता नहीं ना,
1: हाँ जी,
0: तो समय रुकता नहीं और बच्चे का भी एक दिन शादी होता है, तो वही भाई जो जा करके इमली घोटाता है, और इमली घोटाता है जब, तो यहाँ पर ये संदेश रखते हैं भाई कि मैंने आपसे ये वादा रखा था कि कहीं जा करके आपके बच्चे होंगे तो उनको हम ध्यान रखेंगे, और आज मैं इमली घुटा करके और यहाँ से अपना जो कर्तव्य रखे यहाँ से पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए क्यों ना अभी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ और कहने वाले हैं।
1: हाँ जी जरूर, क्योंकि ना हर बात में मतलब छिपे है, उसका अर्थ है, तो इन बातों में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है जो हमें समझना चाहिए।
0: हाँ, कितना जो हम लोग अपना शायद परंपरा से आते हुए देखे हैं कि माढ़ो क्या है, मटकुरवा क्या है, मंडप क्या है, हम लोगों ने अभी मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ये भी रखा था कि 150 साल से ज़्यादा हम लोगों ने भारत को छोड़ कर के सूरीनाम गए, सूरीनाम से हॉलैंड और भी देशों में गए हैं, पर अपना सभ्यता संस्कृति और भाषा को नहीं भूले हैं।
1: सही बात, और हर बात में एक गहराई छुपी है,
0: हर बात में एक गहराई छुपी है,
1: उस रीति रिवाज का मतलब क्या है, अर्थ क्या है,
0: सही
1: जो हम लोगों को समझना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सुनने वालों, हम लोगों ने इस पे भी ध्यान दे, क्योंकि देखा जाए कि जो हमारे पुरखों है, जैसे कि एक शुरुआत में मैंने भी एक गीत को चलाए जिसमें ये मंत्र का संदेश रखा गया कि नानी तेरी मोर को मोरनी ले गए।
1: हाँ जी,
0: तो ये गीत का जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, अभी तक नया फैशन उसे ना लिख पाए कोई,
1: नहीं नहीं।
0: अब देखा जाए ये चंदा मामा वाला भी अलग अलग लोग अपने आवाज में गाए हैं, म्यूजिक को बदल दिए, पर वो टेक्स्ट को नहीं बदल पाए।
1: नहीं नहीं नहीं, और देखो ना जो शब्द बने हैं, माँ और मामा कहते हैं तो दो माँ लग जाते हैं, क्यों माँ से भी बढ़कर मामा,
0: तो मामा लोग के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि अपना उस पे ध्यान दे कि भाई हमने अपना बहन के शादी में जब जा करके उनका कन्यादान हो रहा था तो जल को और छोड़े थे, और कुछ कर्तव्य आपने किए पर शायद इस बात को नहीं जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों हम एक और
1: वैसे ही मासी, मासी में भी माँ लगता है तो वो भी माँ जैसी मासी,
0: मासी में भी माँ लगता है माँ जैसे, क्यों ना एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं बबली जी।
1: जरूर।

0: नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत हम सुन के हमें भी कुछ ख्याल आता है कि देखा जाए हम इसी में लगे हुए शायद होते हैं, पर समय हमें छोड़ता नहीं है और एक दिन वो समय आता है जहां हम फॉरसॉकिंग सॉइस में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी सब जो अपने जीवन में लगे रहे हम उसे छोड़ देते हैं और वहां बस यही होता है कि आज हमें जीना है। एक दिन और ऐसी प्रकार से पार होता है और हर एक दिन एक एक दिन के तरह आगे बढ़ते हैं, ना बबली जी?
1: तो संजय जी, आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई जात पात का झगड़ा नहीं है।
0: जैसे कि बचपन में हम सब क्लास में बैठते हैं ना,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो क्लास में सभी बच्चे और एक साथ में मिल करके गाते हैं,
1: जरूर।
0: और इसी तरह से हमारे अवस्था जब आ जाता है तो हम भी वहाँ पर बैठ करके और सभी मिलजुल करके कोई भेदभाव नहीं रखते हुए और साथ में रहते हैं।
1: लेकिन जहाँ हम जाते हैं सब जगह इकट्ठे काम करते हैं, चाहे काम करने जाएं, चाहे स्कूल में पढ़ने जाएं, सब लोग इकट्ठे मिलते हैं वहाँ पर।

0: फिल्म जिसमें ललिता पवार ने काम किया ना,
1: हाँ जी,
0: और ये सुंदर सा संदेश जो बच्चे अपने दादी को मना रहे हैं,
1: और जो बच्चे बने हैं उसमें एक डेजी ईरानी है,
0: डेजी ईरानी
1: और वो फराह खान जो डांस डायरेक्टर है उनकी मौसी है,
0: उनकी मौसी। तो ये गीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रूबरू मिलने की इच्छा करता है लेकिन शब्दों से ही बयां करता हूँ। आज के मेरे फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के श्रोता गणों को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो प्रोग्राम है उसके विषय में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में और पितृपक्ष के समय के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमारी रिसर्चर हैं, बहुत गहरे गहरे से खोज खोज के लाते हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो शांता जी आप कुछ कहना चाह रही है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी, जाना था हमसे दूर, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए अब तुमने कितने दूर, ठिकाने बना लिए। मेरी आवाज़ के सुनने वालों, सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। और यहाँ से जैसे राजेंद्र जी कहा कि आज की ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से हम लेकर उपस्थित हो गई है,
0: तो क्यों ना शांता जी जिनका दिल उदास है उसके लिए, उनके लिए कोई एक भजन चलाया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से चला दे।
0: उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: राजेंद्र जी, राम जी का और जो कृपा है तो जरूर हम सब पे है। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए शांता जी, ये बताइए कि क्या आज का विषय है?
1: जैसे हमने बताई शुरुआत में, तो आज के विषय है पितर पक्ष के बारे में। तो उसी के विषय में हम आप सबको यहाँ तैयारी करी है और यहाँ से हम अपने सुनने वालों को पहुँचाएंगे, बताएंगे कि पितर पक्ष के बारे में और उसके क्या सब सुविधा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, अगर जब देखा जाए कि जब ये त्योहारों में एक त्योहार, ये पितृ का त्योहार जब आ जाता है ना
2: जी,
0: लोग पंडितों को फोन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं, खास करके जिनका परिवार में हाल ही में कोई गुजरे हुए है, तो वो पूछने लगते हैं कि क्या मैं ये पार्व श्राद्ध जो है, पितृपक्ष जो हम सूरीनामी में कहते हैं ना, तो उसे उसमें हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं? ये प्रश्न हर बार आता है और हर बार पंडितों जनों से ये बढ़िया से संदेश दिया जाता है, पर उसके अंतर्गत में आज हम लोग के कुछ और जानकारी मिल सके तो बड़ा बढ़िया होता।
2: आज बहुत सारी जानकारी इसी बारे में है, इसीलिए ये प्रोग्राम में आज ये चीज़ रखी है। पितरों के लिए इसी समय जो समय है वो ही समय कर सकते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, बात ये हो जाता है, लोग मांगते हैं करने को
2: जी,
0: यहाँ पर ये भी संदेश हो जाता है कि कभी काल के कोई ऐसे बात करते हैं कि मैं अपने पितरों के अंतर्गत कुछ करना चाहते हूँ। पितरों है जो इस समय जो दुनिया को छोड़ चले गए, जिनके कृपा से हम लोगन है,
2: हाँ।
0: यानी कि हमारे पितरों का नाम, तो ऐसा जब देखा जाए तो आजकल लोग से पूछा जाए कि भाई पिता का नाम, तो शायद पिता का नाम सभी जानते होंगे, पर पिता का नाम, वृत्त पिता का नाम, ये तो बस मुश्किल होने लगता है।
2: हाँ।
0: और यहाँ तक तो हम यह नहीं कहने वाले हैं कि जो बीच भारत को छोड़ करके और सूरीनाम 150 साल पहले गए थे, उतना दूर तो दूर की बात है। लोग अपना खुद का गोत्र और अपना खुद का पितृ का नाम गमन, यानी कि उस पर चिंता ही नहीं करते, और पितृ दोष जब लगते हैं तो औरों से जा करके कितना लूटे जाते हैं, उसके बारे में तो आज कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा बस यही के बारे में होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के अंतर्गत।
2: जरूर, लेकिन जब आपने ये बोल ही लिया कि अपने पितरों के नाम याद होना चाहिए, तो जब आप भारत में जाते हैं तीर्थ यात्रा में, जैसे हरिद्वार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी जो धाम है, वहाँ पे जब भी आपके कोई पिछले पितर गए होंगे, लोग गए होंगे, आपके दादा परदादा कोई भी गए होंगे, तो वहाँ से वो खाता होता है एक पंडितों के पास, इतना बड़ा खाता,
0: पंडा के,
2: पंडा,
0: हाँ जी,
2: तो पंडा के पास सब लिखा रहता है आपके जितने लोग यात्रा गए वहाँ पे गए, वो पूरा रजिस्ट्रेशन रहता है उनके पास, आपका दादा का नाम ये था, परदादा का नाम, इसका नाम, उसका नाम, उसके उसका नाम, मैंने खुद जाके देखा है। तो जब गए वो डेट लिखी रहती कब गए थे वो, तो उन्होंने क्या क्या कराया था वहाँ पे पितृ पक्ष के लिए और क्या कराया था, सब चीज लिखा रहता है
0: उसमें, मिल जाता है,
2: उसमें मिल जाता है, खाता पंडित पंडा।
0: इस बात पे ध्यान देना कि आप, हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना जीवन के ज्योति के अंतर्गत में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, उसमें और प्रकाश जरूर आएगा। और जब आप अपना पुरखों का अपना, और जैसे कि भाई राजेंद्र जी जो हम सबको संदेश दे रहा है कि कहाँ पर आप जा करके उसका और अपना, यानी कि पितरों तथा अपने पुरखों के बारे में, अपने गोत्र के बारे में पा सकते हैं। राजेंद्र जी, देखते हैं कि शांता जी पिटारा से क्या भर के लाए हैं।
2: जरूर शांता जी,
0: हम सब पर
2: अपना पिटारा, तो शांता जी का पिटारा तो हमने यहाँ सेट कर रखा है।
1: राजेंद्र जी सभी सेट करके रखिए, अभी आपको सुनाएगा
2: जी।

0: माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। तो जैसा कि अभी सुन रहे थे संजय जी का प्रोग्राम कि उन्होंने क्या खाया नहीं खाया, लेकिन वो नहीं पता चल पाया अभी तक। संजय जी बताइए कि आपने खाया क्या है।
1: राजेंद्र जी, बताने का दिल है पर खाने का दिल भी और है, तो अभी जरूर बताएंगे कि क्या। और आज का समय थोड़ा निकल गया था, अभी उसके बारे में और चर्चा किया जाएगा।
0: जरूर।
1: आज हमारा विषय है राजेंद्र जी, जो कि पर्व श्राद्ध अंतर्गत, और उसके बारे में हम सबको कुछ जानकारी को हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, और देखेंगे कि क्या हम सबके लिए और हमारे विशेषज्ञों लोग तैयार करके रखे हुए हैं।
0: हाँ जरूर।
1: तो राजेंद्र जी, आपके पास क्या संदेश है?
0: सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पितृ चरण में नमन करी, ध्यान धरी दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करी, सिर पर धरे दो हाथ।
1: सिर पर धरे दो हाथ। तो राजेंद्र जी, पितृ
0: दो हाथ नहीं, सिर पर धर दे हाथ।
1: हाँ,
0: धर दे
1: तो वो पितरों ऐसा अपने पुत्रों के कर सकते हैं।
0: हाँ, पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो पुत्रों पे बहुत लगता है, उसी आशीर्वाद से सब लोग बहुत फूलते फलते हैं।
1: पर राजेंद्र जी, ऐसा होता है लोग तो डरते हैं अपने पितरों के कार्य करने के लिए।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं डरना नहीं है पितरों के कार्य करने
1: वो
0: के लिए।
1: कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हूँ, और जरूर करने का इच्छा भी रखते होंगे, पर उसमें ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर जब मैं ये करूँगा तो मेरे बच्चों को ये भी करना पड़ेंगे।
0: तो आगे बढ़ते हैं इसी में, ये कदम्ब है आपका, ये कुटुंब है आपका, आपका परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम लोग हैं, तो कैसे डरने का विषय है?
1: पर लोग तो डरते हैं।
0: किस बात से डरते हैं?
1: और खास करके राजेंद्र जी, मैं तो देखा हूँ कि कहीं पे गए थे, कहीं पे गए थे, किसी का मृत्यु हो गया था, तो वहाँ हम लोग सत्संग करते हैं ना, तो जाकर के रामायण पाठ कहीं और गरुड़ पुराण पाठ होता है, तो वहाँ गए तो वहाँ लाइट ऑफ हो गया।
0: हो,
1: अब लाइट ऑफ हो गया, कैसे लाइट ऑफ हुआ ये पता नहीं है, पर लोग डर गए। जैसे ये पितर के बात होता है इसमें, या लाइट के बात होता
0: नहीं,
1: है
0: इसमें, नहीं, इसमें पितर का बात नहीं,
1: के बात होता है,
0: इलेक्ट्रिसिटी की बात है। हो सकता है उस समय लाइट चली गई हो, या कुछ ड्रिप हो गया हो, ट्रिप हो गया हो, तो उसका पितर का कोई बात नहीं।
1: और राजेंद्र जी, बात ये भी है कि ये कार्यक्रम जो चल रहे है, आज का विषय रखा गया है, तो इसमें भी संदेह है कि पितर और प्रेत इसका अंतर क्या है, तो अभी ये हम सबको भी सुनने को मिलने वाले हैं। तो और आ चुके हैं
0: सांद्रा जी,
1: सांद्रा जी आ करके पहुंच गए हैं स्टूडियो में,
0: तो भूल
1: कि क्या हम सबके लिए।
0: तो दो लाइन और पितरों के बारे में कह देते हैं। भूल चूक सब क्षमा करी, करी मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरी, कष्ट करी सब दूर। तो क्यों ना एक छोटा सा हम भजन चला दें।

0: अवनित हित परिवार, तो पितरों के समान आज हमारे बीच सांड्रा जी भी उपस्थित हुई हैं। तो आप कुछ सुना है कि बहुत बढ़िया चीज लेके आई हैं। सांड्रा जी बताइए।
1: आप सबको मेरा भी नमस्कार। तो एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ।
0: जरूर।
1: पितरों के लिए, आप हमारे हृदय में, आपके हम संतान, आपके नाम से हैं जुड़े मेरे हर पहचान। आपके ऋण बढ़े सदा, नहीं चुके जाए, सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए। तो आप बताइए राजेंद्र जी, मैंने क्या कहा?
0: आपने वेद पुराण की बात कही, क्या बात? और आपने क्या कहा?
1: मैंने कहा कि आप हमारे हृदय में हैं।
0: आप हृदय में हैं, पुराण में
1: संतान आपसे जुड़े हैं, आपकी पहचान है, पितरों से हमारा पहचान है। ये ऋण बढ़े सदा, नहीं चुकाए जाए, सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए।
0: हाँ, आपने बताया कि जो पितरों के जो हम पे ऋण है वो नहीं चुकाया जा सकता है, अगर सात जन्म भी लें तब भी नहीं चुकाया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने जो बताया है। बढ़ते हैं आगे कि पितरों के समान और क्या क्या चीजें हैं। तो तीन वृक्ष, तीन पक्षी, तीन पशु और तीन जलचर। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा की ऊर्ध्व भाग में माना गया है। धर्मलोक के अनुसार माना गया है। और दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाशमंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं वो लोग, उस लोक को पितृलोक कहते हैं। तीसरी ओर कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं।
2: राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि पक्षी,
0: हाँ,
2: तो खास करके मैं कुछ फिल्मों में देखे हैं और व्हाट्सएप बरेख पे भी भेजा जाता है कि कोई प्रकार के पक्षी भी होता है जिसे, और ये पितृ पक्ष यानी कि पर्वस रात में उसे कुछ खाने पीने के दिया जाता है।
0: कौवा, कौवा,
2: वो कौवा होता है, तो उससे,
0: हाँ, कौवा की बात अभी हम आगे आने वाली है,
2: आने वाले।
0: अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। वरुण देव जल के देवता हैं और पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तीन वृक्ष की सबसे पहले बात करेंगे। पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव हैं। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। और दूसरा नंबर है बरगद का वृक्ष। आगे का संदेश बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। बेल आप जानते हैं?
1: बेल वृक्ष, बेल का पत्र
2: जो शिव जी पे चढ़ाया
1: जाता है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है,
2: बेल पत्र
1: पे चढ़ाया जाए।
0: बेल पत्र होता है पत्ता, और बेल पत्थर होता है फल।
2: फल,
0: हाँ, उस वो पत्थर, वो पत्थर जैसा मजबूत,
2: बड़े बड़े।
1: राजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे हैं बेल ब्रादरे के।
0: बेल ब्रादरे,
1: या
0: यदि पितृ पक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। जिसकी आत्मा को शांति न मिले वो बेल के वृक्ष लगाने से मिल जाती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती
3: है। अगर सोने, अगर जैसे आपने कहा राजेंद्र जी कि अमावस्या के रोज अगर पितर पक्ष जो में अगर आपको मौका नहीं मिला करने के लिए कि कोई हालत जैसे हो, तो अमावस्या के रोज आप कर सकते हैं जी।
0: और इसके अलावा अशोक, तुलसी, समी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए।
1: हाँ जी, केले में तो साक्षात विष्णु भगवान निवास करते हैं।
0: हाँ, केले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही है।
2: आगे चलते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि संदेश ज्योति का प्रकाश में ये ही लक्ष्य रखा जाता है कि कुछ ना कुछ संदेश हम सबको प्राप्त होए। जैसे कि पता है कि शांता जी भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर भी आए हैं, तो देखते हैं राजेंद्र जी, क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर हाँ। आगे हम सब कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं।
0: जरूर, जरूर।

राजेंद्र जी, कहा जाता है कि ईश्वर दुनिया के सबसे बड़ा और डॉक्टर है। प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ी दवा है। तो आगे का कार्यक्रम में आप क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर और दवा के बारे में तो हमें जानकारी मिल गया है,

0: जी, मेरे पास भी दो लाइनें बची हुई है कविता के। हर दिन हर पल आपसे मांगे ये वरदान, वंश भले बताते रहे बढ़े मान सम्मान। ये पितरों से होता है। घर पिंडे में आप विराजे ये ही अरज करे, कहत भक्त हम शरण आपके निस दिन महर करे, ओम पितृ पितरायने नमो नमः।
1: तो राजेंद्र जी, सांद्रा जी काफी चतुर है और सामान लेकर आए हैं जिसे हम सबको, और काफी जानकारी छोड़ दिए हम सबके लिए।
2: हाँ, सांद्रा जी तो तैयारी कर गई है, सुरनाम जाती रहती है और पितृपक्ष के बारे में पढ़ती रहती है, तो उनको तो ज्ञान है ही है।
1: ऐसा बहुत बढ़िया बात है सांद्रा जी, जो आपने भी संदेश दिए। ये पर्व श्राद्ध अंतर्गत जो पितृपक्ष से हम सब जानते हैं, इसमें कौन सा जानकारी अभी और राजेंद्र जी रखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे अभी से कह देता हूँ कि शांता जी भी कुछ तैयारी करके लेकर आए हैं, और ना सिर्फ शांता जी के पिटारा में सुंदर सुंदर गीतों हम सब के लिए रहते हैं, पर शांता जी कुछ नई दलांस में लेकर के हम सब के लिए आए हैं। पर राजेंद्र जी, सब कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पर क्यों ना आप आज कुछ संदेश और सुना देते तो फिर हम सब शांता जी की ओर बढ़े।
2: हाँ, जरूर। आगे का जो संदेश है कौवा के बारे में, कौवा को, कौवा यानी कागा,
3: कागा
0: कागा शनिदेव के वाहन।
2: कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवा को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण कर सकती है।
1: तो राजेंद्र जी, कौवा के बारे में कुछ और हम सबको जरूर बताइए, पर हम लोग को, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के, हम सबके जरूर समय दिए है कार्यक्रम करने को, पर हम लोग के कुछ परप्लेक्सिंग होते हैं और हम सब न्यूज़ की ओर पहले बढ़ते हैं। और न्यूज़,
2: हाँ, न्यूज़ से जब कौवा की बात चली गई तो एक मिनट की बात और रह गई है। जब कोरोना का समय आया तो कौवों ने एक मीटिंग करी, कौवों ने एक मीटिंग करी सबने।
1: हाँ जी।
2: श्राद्ध पक्ष को देखते हुए कौवों की आपात मीटिंग बैठी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस घर में बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार होता है, उस घर के अन्न जल का बहिष्कार किया जाएगा। जो जीते जी अपने माता पिता को पाल न सके, वे मरे हुए लोगों को पितृपक्ष पितृभोग लगाने की कोशिश के काबिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कौवों ने कैसी मीटिंग करी है, ये देखो। और लास्ट ईयर जब कोरोना के समय कौवों ने एक मीटिंग और करी थी कि भाई इस बार कौन कैसा रहेगा, क्योंकि कोरोना का समय है, इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग सब लोग जाएंगे, तो उनकी ड्यूटी अलग अलग लगी थी कौवों की। तो वो संदेश हमने पिछली बार देखा था, बड़ा बढ़िया संदेश था वो भी। इस प्रकार से कौवों की बात चली थी, तो क्यों ना आगे अब न्यूज की ओर बढ़ा जाए और इसके बाद सारा जो वृतांत रखा जाए उसकी बात करेंगे।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen, zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod, direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 km op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. VAHON Hindoestani Radio.
3: VAHON Hindoestani Radio की न्यूज सब लोगों ने सुना, कमर्शियल भी सुना. और हमारी बात चल रही थी कौवा पे, तो अब कौवा से बात खत्म करके हंस की ओर चलते हैं.
4: पर राजेंद्र जी,
3: जी
4: ऐसा कौवा तो हॉलैंड देश में है ना?
5: हाँ
3: हाँ खूब.
4: पर सांद्रा जी, आपको तो पता होगा सूरीनाम में कौवा है कि या नहीं?
5: नहीं कौवा नहीं है, कोयल है. नहीं नहीं नहीं कोयल
4: नहीं, कोयल कोई और होता है, कौवा कुछ और होता है ना.
3: कौवा बड़ा होता है, कोयल छोटी होती है. कोयल की आवाज सुरीली होती है, कौवा के काव काव होती
5: है. कौवा बहुत काव काव करता है,
4: कौवा काव काव करता है.
3: काला कौवा काव काव करे.
4: दोस्तों ये बात है कि शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से. आत्मा जब धर्म से पवित्र होता है तो राजेंद्र जी कार्यक्रम में आगे क्या संदेश है ये तो सुना दो.
3: आगे का संदेश हंस है.
4: हंस, हंस किसको कहते हैं?
3: डक.
4: डक
5: उसे स्वान कहते हैं, वेत स्वान, जो सरस्वती माता.
3: हाँ हंस, हंस
4: उसको कहते हैं. हंस
3: हंस की, हंस की जो विशेषता है वो ये है कि पानी और दूध को मिला के इकट्ठे करके रख दिया जाए और हंस के सामने रख लिया जाए तो हंस उसमें से दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़
5: देगा, पानी पानी ही रह जाएगा.
3: ऐसा उसकी चोंच में ऐसी व्यवस्था है.
6: हाँ पर हंस में फर्श के लेना,
3: हंस सरस्वती का वाहन भी है.
6: हाँ हाँ पर जो हंस हम यहाँ पे देखते हैं हॉलैंड में वो वाला नहीं.
5: नहीं
6: अगर उसका पहचान आप जानना चाहते हो तो उसका चोंच देखना.
3: हाँ हंस, चोंच से पहचान
6: हंस का
3: होती.
6: चोंच जो है वो लाल होता है, जो यहाँ वाली हैगा वो सब ओराये हैं. तो असली हंस जो है उसका चोंच लाल होता है. वो हंस के बात हम कर रहे हैं.
3: हाँ वही हंस है. पक्षियों में हंस एक ऐसा पक्षी है जहाँ देव आत्माएं आश्रय लेती है. यह उन आत्माओं का ठिकाना है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं और जिन्होंने यम नियम का पालन किया है. कुछ काल तक हंस योनि में रहकर आत्मा अच्छे समय का इंतजार कर पुनः मनुष्य योनि में लौट आती है, या फिर वह देवलोक चली जाती है. हो सकता है कि आपके पितरों ने भी पुण्य कर्म किए हों.
6: और ये हंस जहाँ तक मेरे ख्याल है ये सिर्फ क्षीर सागर में होता है.
3: भगवान गरुण विष्णु के वाहन हैं और भगवान गरुड़ के नाम से ही गरुड़ पुराण है, जिसमें श्राद्ध कर्म, स्वर्ग, नरक, पितृलोक आदि का उल्लेख मिलता है। पक्षियों में गरुड़ को बहुत ही पवित्र माना गया है। भगवान राम को मेघनाद के नागपास से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ का आश्रय लेते हैं। और इसके अलावा कोंच या सारस नाम का भी लिया जाता है, जो पितृपक्ष में एक कोंच और सारस का नाम भी लिया जाता है, उनको भी वो अन्न देना चाहिए उस समय।
4: तो राजेंद्र जी, कोंच ये पक्षी है या जानवर है क्या?
3: पक्षी है।
4: एक पक्षी?
3: हाँ, एक सारस होता है जो ऊपर लाइन से चलते हैं, और एक क्रॉंच, क्रॉंच नहीं, वो क्रॉंच वो तो शंख।
5: हाँ, शंख,
3: शंख उसमें वो क्रॉंच।
5: हाँ, शंख बोले।
3: तो जो शंख जिससे निकलता है वो तो रहता है समुद्र में, मिलता है नदी में नहीं मिलता। तो इस प्रकार तीन पशुओं की भी बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा हम सांता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं नीदरलैंड में?
6: जरूर। तो यहाँ से हम आप लोगों को बता दे थोड़ा डच में, नीदरलैंड भाषा में, कि पितर पक्ष क्या होता है और किस लिए है, और तो पता है तो यहाँ से हम शुरू कर दे।
3: हाँ जरूर।
6: पितर पक्ष यार लक्ष्य दूध फर एरिंग तेजस द डोंकर हेल फॉर द मंथ सितंबर अक्टूबर वॉर द door sommige hindoes de doden herdag. Deze herdenking wordt Pritra Shraad genoemd. Dit wil zeggen het offerfeest voor de gestorven voorouders. Pieter is voorouder en Paksh is de donkere maandhelft. Dat deel van de maanmaand waarin de maan afneemt. Gedurende 15 dagen wordt er aan degene die de doden herdenken, een tilangeli gegeven. Dat is een offerande bestaande uit water, til. De til is sesamzaad met bloemen op een soort gras, janneke kusha gras. Deze offerande wordt in de hand gegoten, waarbij beide handen tegen elkaar worden gehouden. Anjali, de dubbel handvol. De tilangeli wordt dan op een gewijde plaats op het erf geplengd of uitgegoten. De gestorvenen worden herdacht om hun positie in de dodenrijk te verbeteren en voor hun welzijn en geluk al daar. Tevens smeekt men zegen van de overledenen af voor de nabestaanden voor geluk, welzijn. De plaats van de gestorvenen in het dodenrijk vertegenwoordigt een heel oud geloof dat in feite in alle natuurgodsdiensten voorkomt. De overledenen gaan naar het rijk van Yam. De eerste overledene na de schepping van de mens en sindsdien de vorst van het dodenrijk, oftewel Yamraj. Het welzijn van alle overledenen wordt in niet geringe mate bepaald door de offers van spijzen door hun levende nakomelingen. Het ritueel dat hierbij gevolgd wordt, is ook van zeer oude datum en stamt af van voor de tijd dat in de religieus denken van de Indiërs de gedachten van karma en reïncarnatie ontwikkeld werd. Karma houdt in dat de mens de loop van zijn leven bepaalt door de daden die hij verricht. Karma betekent letterlijk handeling, daad. Krachtens de daden van de mens wordt zijn leven bepaald. Reïncarnatie is wedergeboorte. Volgens deze gedachte blijft de ziel voortbestaan. Slechts het lichaam is vergankelijk. Dit is een gedachte die ook in alle godsdiensten terug te vinden is. Vandaar de doden verering. तो यहाँ तक था सुनने वालों डच भाषा में नीदरलैंड भाषा में पितर पक्ष के बारे में।
4: राजेंद्र जी, शांता जी ने अच्छी सुंदर सूप रूप से और नीदरलैंड में जो संदेश को हम सब के लिए पहुँचाए, और जैसे कि हम सब अभी और भी संदेश आपके ओर से प्राप्त करने वाले हैं, तो आगे का संदेश क्या है, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर उसके बारे में उसके बाद में हम सब और आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे।
3: जरूर।

0: तो पितृपक्ष की जैसे बात चल रही थी, आगे बढ़ते हैं, तीन पशुओं की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है कुत्ता। कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। कहते हैं कि इससे इधर माध्यम की वस्तुएं भी नजर आती है। कुत्ता जो है यम का दूत है, तो उसको पहले ही हो जाता है, आसार हो जाता है कि क्या होने वाला है। दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को और ईथर माध्यम सूक्ष्म जगत की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ते को
1: आगम हो जाता है पहले से।
0: हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से भी भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ते को रोटी देते रहने से पितरों की कृपा बनी रहती है, तो इसलिए कुत्ते को रोटी देना हर समय देना चाहिए, तो आपके पितरों की कृपा आपके बसी रहेगी। अगला है गाय। जिस तरह गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, उसी तरह गाय में सभी देवी और देवताओं का निवास बताया गया है। दरअसल मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। गाय जो गाय माता है, कुछ लोग जानवर बोलते हैं, पशु बोलते हैं, तो गाय को पशु नहीं बोलना चाहिए, तो गाय माता का दर्जा दिया गया है।
1: हाँ राजेंद्र जी, जैसे आपने कहा था 84 लाख योनि से
0: 84 लाख योनियों, मतलब
1: हाँ
0: हम मनुष्य की एक योनि है, ऐसे कुछ कुत्ता जानवर जो अलग अलग 84 लाख योनियों में से जब सबसे आखिरी योनि गाय की होती है,
1: हाँ।
0: वहाँ वो आत्मा कुछ समय के लिए विश्राम करती है और हाँ। इसके बाद आगे की यात्रा पे बढ़ती है।
1: अच्छा
0: हाथी, हाथी की बात चल रही है। हाथी को हिंदू धर्म में भगवान गणेश को साक्षात रूप में माना गया है। यह इंद्र का वाहन भी है। हाथी को पूर्वजों का प्रतीक भी माना गया है। जिस दिन किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसका कोई साथी भोजन नहीं करता। हाथियों को अपना पूर्वजों की स्मृतियाँ रहती है। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधिवत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा रखने वाले उस दिन हाथी की पूजा करते हैं।
1: गज किसको कहते हैं?
0: गज हाथी को कहते हैं।
1: अच्छा,
0: गज मत संस्कृत में बोलते हैं ना।
1: अच्छा गज। अच्छा,
0: इसके अलावा बराहा, बैल और चींटियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी सी चींटियों को चावल देते हैं चिड़ियों को, वही बैकुंठ चले जाते हैं। तो इसलिए चींटी को आटा देना चाहिए, चिड़ियों को चावल देना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: जरूर जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं शांता जी भी कुछ तैयार कर चुके हैं कहने के। मेरे ख्याल से कुछ पिटारा से कुछ सुनाने वाले हैं अपने ओर से। पर शांता जी, यहाँ पर किसी ने ये संदेश भी भेजा है राजेंद्र जी कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो सुख के ताला के और किसने लगाया है, इसके लिए कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और ज्योति का प्रकाश जिसमें आपको कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए खोज खोज करके रखा जाता है और जिसे आपके जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके। दोस्तों ये कार्यक्रम जो लगभग 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो आशा यही है कि इस कार्यक्रम से कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर प्राप्त होए। चलो एक गीत सुन लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: वो घर कितना सुंदर है जिस घर में पितरों का हो सत्कार। बहुत अच्छा जो भजन था, बहुत ही अच्छा भजन था। शांता जी, आपने जो भजन ढूंढते हैं बड़े, उसका हम बहुत ही आभार करते हैं कि आप इतने ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीज़ लाते हैं। हाँ, समय लगाते, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, जलचर जंतु। तीन जलचर जंतु की बात चलेगी। भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का अवतार लेकर मनुष्य जाति के अस्तित्व को जल प्रलय से बचाना था। जब श्राद्ध पक्ष में चावल के लड्डू बनाए जाते हैं तो उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। कछुआ, आगे की बात चलेगी कछुआ की।
1: तो राजेंद्र जी, कछुआ है क्या? कछुआ,
0: कछुआ
1: किसको कहते हैं?
0: कछुआ एक ऐसा होता है, ऐसा स्केल पार। वो ऐसे चलता है।
1: कछुआ किसको कहते हैं शांता, अगर आप हो सके तो और बढ़िया से हम सबको बता सके।
2: स्केल पात।
1: हाँ, राजेंद्र जी स्केल पात को कहते हैं।
0: भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर ही देव और असुरों के लिए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थापित किया था। जब भगवान ने कछुआ का अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पे लिया
3: तो समुद्र मंथन
0: और समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिस विष से एकदम सब लोग झुलस रहे थे, कुछ मर रहे थे। तो फिर भगवान शंकर ने अपने गले में उसको विष को रोका और वही नीलकंठ महादेव के नाम से जाने गए। हरिद्वार से थोड़ी दूरी पे एक जगह है नील का मंदिर, आपने कोई गया है?
3: हाँ, हमने गए।
0: तो वही,
1: तो सांद्रा जी आपने भी गए हैं नीलकंठ मंदिर?
3: हाँ जी, मैं गई।
1: तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वहाँ का वातावरण कैसे है, वहाँ पर जाकर के क्या खूबियां है और कैसे वहाँ पहुँचते हैं?
0: हाँ, कछुआ की थोड़ा सा बात खत्म कर देते हैं, इसके बाद सांद्रा जी आप बताएंगे वहाँ के बारे में। कछुआ बहुत ही पवित्र उभयचर जंतु है जो जल की सभी गतिविधियों को जानता है।
1: अच्छा? जल की सभी गतिविधियों।
0: हाँ, कछुआ को बहुत सारे लोग अपने घर पे भी रखते हैं, कहते हैं कि कछुआ अगर घर पे रहता है तो लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए रखते हैं।
1: ऐसा।
0: और तीसरा जो है नाग है। भारतीय संस्कृति में नाग की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक रहस्यमय जंतु है। यह भी पितरों का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा मगरमच्छ भी माना जाता है। तो बताइए जी,
1: मगरमच्छ किसको कहते हैं राजेंद्र जी?
0: मगरमच्छ जो पानी में
3: देव।
1: कि हम जरूर समझ जाते, जैसे कि राजेंद्र जी हम सबको एकदम सरनामी में जो हम सबको समझा देते हैं और सारा संदेश। राजेंद्र जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा वृतांत जब सांद्रा जी हम सबको सुना दे कि उन्होंने जा करके और कौन सा स्थान पे गए थे। सांद्रा जी
3: जी, हम गए थे नीलकंठ मंदिर, वो हरिद्वार में है। पहला बात तो ये है, आप भारत जाओ और मन में लेकर जाओ कि आप जा रहे हो हरिद्वार, तो सबसे पहले मन में आता है कि शिव बाबा के दर्शन होंगे और गंगा की दर्शन होगी, गंगा स्नान करेंगे। तो हम लोग तो गए थे न्यू दिल्ली से, हम लोग तो बस से गए थे और वहाँ से पैदल गए थे। तो जो मन में हो गया कि गंगा जी की दर्शन होगी, शिव जी की दर्शन होगी, तो मन तो तृप्त हो जाती है। बस ये बात सुनकर, ये बात दिल में रखकर जाओ वहाँ पर। हम तो गए थे, समर रहा, ठंड नहीं थी,
1: गर्मी के समय था,
3: बहुत था धूप, बहुत था। तो हम लोग गर्मी के समय में गए थे और गंगा में पैर रखो, गंगा इतना ठंडा है, गंगा जी
1: शीतल
3: जल, सो अनहेल खुद रिलैक्स फुल। एंड हाँ जी, हम गए मंदिर में, शिवलिंग है, शिवलिंग पर अर्पण किए, जो भी अर्पण कर पाते थे वहाँ। थोड़े थोड़े पंडितों है वहाँ पे जो मदद करती है, चीज़ें बिकती है, जो भी चढ़ाना चाहो चढ़ा लो और मन अपना तृप्त कर लो। जैसे आपने कहा, मन शुद्ध करो तो धर्म के काम कीजिए ना, मन के पवित्र करना है तो धर्म के काम कीजिए, धर्म के काम करने से मन पवित्र होता है।
2: हाँ सांद्रा जी, अपना अपना बताए, अच्छा लगा सुनने के लिए। और मेरे ख्याल से
1: सुनते सुनते ये भी मन में हो गया कि मेरा भी इच्छा हो रहा है, कब चलें?
2: और हम चलें, चलेंगे सच में
3: फिर से।
2: हाँ हाँ, ये सांद्रा जी जो गंगा जल के बात करी ना, तो जैसे हम, मैं भी एक बार भारत जो गई तो मेरे गोड़ में बहुत सारा दर्द था, ठीक से चल नहीं पाती थी और मेरी पैर बहुत से सूजन था उसमें, और ऐसा मौका आया कि हम सब गए काशी,
1: काशी
2: काशी विश्वनाथ। तो वहाँ पे हमारे गाइड जो है हम सबको बोट में बैठा कर अलीगढ़ एक्वा की
3: दूसरे किनारे
2: किनारे हाँ, तो वहाँ से हमको कहा, हम सभी को कहा कि आप अपना पूजा करना चाहते तो करो। तो मेरे मन में यही, कभी मैं सुनी थी कि इरफान गंगा जी जो आप मांगोगे जो भी करोगे मन से करोगे तो वो पूरा करती
1: है, तो माँ गंगा है।
2: और वाकई मैं गई, मैं तो स्नान नहीं की बार मैं उसमें गई गंगा में, और उससे
3: रखी आपने,
2: उससे माता से मैंने प्रार्थना की मने मन में, और सच में उसी दिन मेरी पैर अच्छी हो गई और आज तक मेरी पैर में दर्द नहीं।
0: तो सुनने वालों आपने देखा कितना बढ़िया वृतांत शांता जी ने बताया गंगा का, कि गंगा में केवल जल के स्पर्श मात्र से ही समस्त दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि गंगा जल से ऐसा नहीं होता। तो सब पॉजिटिविटी अगर जो लोग उन तरफ रहते हैं तो उनका जरूर होता है, जो नहीं रखते तो उनका मैं कह नहीं सकता,
2: होता है।
0: बहुत ही अच्छा शांता जी आपने जो
2: स्नान के, और उसमें हम स्नान के कुंभ मेला में हम गए थे, जितने दिन हुआ थी दो हफ्ते हुआ थी, रोज हम जाते स्नान करें और उसका परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत नहीं होता है, पर समय के अनुसार उसका परिवर्तन होता है अपने जीवन में।
1: दोस्तों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश चल रहा है। तो राजेंद्र जी,
0: जी
1: जरा ये तो बताइए कि कुछ और संदेश है हमारे ये पार्व श्राद्ध के अंतर्गत।
0: हाँ, जैसे कि आजकल पितृपक्ष की शुरुआत है, चल ही रहा है पितृपक्ष, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत। जी
1: क्यों ना एक सुंदर सा गीत, क्योंकि शांता ने आज का गीतों जो इकट्ठा किए है ना, ये हम जानते हैं कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारे सोच, हमारे व्यवहार एवं हमारे कर्म है हमारा भाग्य लिखते हैं। तो राजेंद्र जी, एक सुंदर सा गीत के ओर हम सब चलते हैं, फिर आगे कार्यक्रम बढ़ेंगे।
0: जरूर।

0: भरोसा करना भारी है। तो क्यों ना आगे का जो आजकल पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा समझ जा जाए।
1: कहने के तात्पर्य यह है दोस्तों कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। राजेंद्र जी, जैसे कि आप हम सबके कार्यक्रम में पितृपक्ष अंतर्गत जो परवंश रात है उस अंतर्गत में और सुनाने वाले हैं, तो आगे का संदेश क्या है?
0: आगे का संदेश है कि पितरों का महत्व क्या है। संसार के समस्त धर्मों में कहा गया है कि मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। जैसे मनुष्य कपड़ों को समय समय पर बदलते रहते हैं, उसी तरह जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। जिस प्रकार तमाम जीवन भर एक ही कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार आत्मा अनंत समय तक एक ही शरीर में नहीं ठहर सकती। न जाते मियते वा कदाचिन्नमयी भूत्वा भवितो न भूभुवा, न जायते मित्रते वा कदाचिन्नाय भूता भवितो वा न भूपा, ऊजो नित्वा शाश्वतोम पुराणानां, हन्यते हन्यमाने शरीरः गीता। गीता के अध्याय 2 के अध्याय में कहा गया है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न मरती है। मरना जीवन शरीर का धर्म है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। विज्ञान के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वरन उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति के संस्कार होने के बाद यही अक्षय आत्मा पितर रूप में क्रियाशील रहती है तथा अपनी अनोत्मनी के लिए प्रयास रहित रहने के साथ साथ पृथ्वी पर अपने स्वजनों एवं सुपात्रों की मदद के लिए सदैव तैयार रहती है। पितरों के प्रति श्राद्ध, उनका स्मरण एवं उचित संस्कार करने से हमें सदैव पितरों से लाभ ही लाभ मिलता है। पितर वह उच्च आत्माएं होती है जो अपने स्वभाव एवं संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती है। हिंदू धर्मों के पितरों में संदेशवाहक भी कहा गया है। शास्त्रों में लिखा है, ओम अरयम माना तृप्तताम इदम त्रिलोकम तस्मै स्वाध्याय नमः मृत्योर्मा अमृतम गमया। अर्थात अर्यम्मा पितरों के देव हैं जो सबसे श्रेष्ठ हैं। उन अर्यम्मा देव को प्रणाम करता हूँ। हे पिता महा और प्रति महा, हे माता माता महा और परमात्मा महा, आपको भी बारंबार प्रणाम है। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। इसका अर्थ यह है कि वर्ष भर अपने देवों को समर्पित अनेकों पर्वों का आयोजन करते हैं, लेकिन हमने बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थना देवों तक नहीं पहुंच पा सक रही है। हमारे पूर्वज देवों और हमारे मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं, और जब हमारे पितृ हमारी श्रद्धा हमारे भाव हमारे कर्मों से तृप्त हो जाते हैं, हमने हमसे संतुष्ट हो जाते हैं, तो उनके माध्यम से उनके आशीर्वाद से देवों तथा हमारी प्रार्थना बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है और हमारे मनोवांछित फल की शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। पितरों का सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण वह अपने परिजनों स्वजनों को सतर्क करती रहती है तथा तमाम कठिनाइयों को दूर कराकर उन्हें सफलता भी दिलाती है। सामान्यतः यह सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास भी नहीं देते, परंतु उपयुक्त मनोवृत्ति एवं व्यक्तित्व को देखकर या उपस्थित होकर भी सहयोग एवं परामर्श देते हैं। पितरों का उद्देश्य ही अपने वंशजों को पितृवृत्त स्नेह दुलार सहयोग एवं खुशियाँ प्रदान करना है। संसार में तमाम उदाहरण उपलब्ध हैं जब इन्होंने दैवीय वरदान के रूप में मदद की है। पितरों का महत्व पितर अपने कुल से मात्र अपने प्रति श्रद्धा अपना स्मरण अपना आदर तथा अपने प्रति उच्च संस्कार ही अपेक्षा रखते हैं,

0: प्रदर्शित कर रहे हैं तो उन्हें असीम संतोष एवं सुख का अनुभव हो जाता है।
1: ऐसा होता है। तो राजेंद्र जी, आपने लगातार और हिंदी में और ऐसा संदेश सुंदर रूप से दिया, चलो सांद्रा जी भी उसे कोशिश करेंगे, उसका पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों,
2: नहीं डांस भी करेंगे।
3: हाँ जी, तो मैं भी यहाँ पर कुछ संदेश देना चाहती हूँ डच में, नीदरलैंड्स में। पितृ श्रद्धांजलि वट हाउ दैट इन दैट बिटेकन दैट वी गान फॉर एरन फ्रॉम द फोर ओल्डर्स एंड दैट इज अ हेल बेलंगरेक रिचुअल फॉर द हिंदूस। हियरमी टोनो रिस्पेक्ट voor de verering van de overledene. En het is vooral zo belangrijk omdat de ziel van de overledene na de dood beschermer wordt voor het hele gezin. De verplichting aan de voorouders heet Pitr Reen. Hindoes vervullen deze verplichting door een offerplechtigheid te houden genaamd de Shraad. Shraad wordt meestal gehouden in Pitrapaksha voor de ouders indien al overleden. Alleen voor de overledene ouders wordt deze shraad gedaan. Ouders, grootouders en overgrootouders of voor alle voorouders. Aan hun ouders hebben Hindoes een ereschuld zolang die nog in leven zijn, want die hebben hen verzorgd en opgevoed. Mana to ye pitrareen kabhi khatam nahi hota hai, lekin hum log hinduo maan kar chalte hai ki shraad karne se kuch kam ho jata hai. Ze lossen de schuld voor het grootste deel af door hen te verzorgen als ze oud zijn geworden en niet kunnen werken. Er blijft nog een restschuld over die wordt ingelost met shraad door middel van jaldaan, water en melk, tildaan, maanzaad, diepdaan en het reciteren van Pitr Mantras om uw mata pita parpita op een juiste vedische manier Sridhanjali uit. Aap pitrareen se mukt hona chahte, apne pitro ko mukti dilana chahte ho, to kuch bhi kijiye, lekin kijiye kuch.
1: जरूर, चंद्रा जी ने भी संदेश दिए। राजेंद्र जी, जैसे कि संदेश में और हम सब सुनते आए हैं कि हमें तीन प्रकार के ऋण होता है, पहला जो पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा देव ऋण। इन तीनों पे हमें ध्यान देना है और हम सब क्या कर सकते हैं इसे अंतर्गत में, इसमें कुछ ना कुछ संदेश और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। तो संदेश क्या है, पहले हम सब संदेश सुना देते तो फिर हम सब अगले गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: संदेश थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। अपने प्रियजनों की साधना सहायता के लिए वह हर संभव प्रयत्न करते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने, उन्हें सद्भावना भरी श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति अनुकूल भाव रखकर उनकी सहायता लेने से पीछे नहीं रहना चाहिए। परिजनों का मृतक के लिए लगातार रोना पीटना तथा शोक प्रदर्शन करने से उन्हें दुख होता है, उनकी शांति में बाधा पड़ती है। इसलिए उनकी यादों, स्मृतियों, क्रियाकलापों को सदा के लिए संजो कर रखकर हमने उनसे प्रेरणा कर लेनी चाहिए, उनकी शांति की कामना करनी चाहिए, परंतु मृतक के साथ शारीरिक मोह बंधन शीघ्र ही तोड़ लेना चाहिए। यह मानना चाहिए कि उनका रूप अवश्य बदल गया लेकिन उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। परावैज्ञानिकों को अपने अनुसंधानों के दौरान अनेक साक्ष्य मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि तमाम पितरों ने समय समय पर अपने आत्मियों की कठिनाइयों की सहायता की है तथा उसका उचित मार्गदर्शन भी किया है। कहीं यह नज़र नहीं आई, कहीं उनकी आवाज़ सुनाई पड़ी और कहीं यह स्पष्ट आभास हुआ है कि कोई परलौकिक शक्ति हमारी मददगार बनी। प्रसन्न हमारा उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं कठिनाइयों में उनका स्मरण करने का है। हमें अपने पितरों के प्रति वैसे ही श्रद्धा भावना रखनी चाहिए जैसे हम प्रभु के प्रति रखते हैं। संसार में सभी धर्मों एवं सभ्यताओं में पितरों के प्रति कर्तव्य पूरा करने को कहा गया है। अनेक धर्मों में अलग अलग रीतियों की पितर पूजन एवं श्राद्ध पर्व धर्म की परंपरा प्रचलित है। पितरों को स्थूल सहायता नहीं परंतु सूक्ष्म भावात्मक सहयोग एवं श्रद्धा मात्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तथा प्रसन्न होने पर यह पितर बदलने की प्रेरणा, शक्ति, सहयोग, मार्ग

दर्शन एवं सफलता प्रदान करते हैं। यही आज का जो संदेश था पितृपक्षों के समय का, यही संदेश रहा। अब हम चाहेंगे कि एक छोटा सा भजन चलाया जाए, जिस प्रकार दूजे की बात मानी जाए, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

माँ बाप की नज़र में सर को पकड़ के रोके, बहुत ही अच्छा जो भजन था वैदिक नित्य कर्म विधि का, बहुत अच्छा भजन रहा। अब हमारा समय बढ़ता है आगे की ओर, तो संजय जी अब हम लोगों को वही गाना याद आता कि लागे छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही मोहम्मद रफ़ी का ये गाना और लता मंगेशकर जी का गाना आता है, सब लोगों को पता चलता है कि हम लोगों का समय अपनी सीमा पे पहुंच चुका है और हम विदा लेने वाले हैं। तो समय तो कभी किसी के लिए रुकता नहीं, विदा तो लेना ही पड़ेगा, क्यों ना वही गाना लागी छूटे ना सनम अब तो सनम चलाया जाए।

फाउन हिंदुस्तानी की रेडियो को सुनने वाला हूँ। जैसे कि ये गाना शुरू होता है और हम लोगों का विदा लेने का समय होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को जिन्होंने हमें इतना प्यार से सुना। और आज के जो कार्यक्रम रहा पितृपक्ष के बारे में, सब लोगों ने सुना, मनन किया, बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार इसी दिन इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। यानी सेवक राजेंद्र सिंह का नमस्कार, धन्यवाद।

एहसास मिटा, तलाश मिटा, मिट गया उम्मीदें भी, सब मिट गया, पर जो ना मिट सका वो है याद तेरी। सुने वालों, इसी वाणी के साथ आपको सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। आपको एक शुभ दिवस होवे।

0: जीना।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आपके लिए इसमें जरूर लाभदायक निकले, और हम सब अगले सप्ताह कार्यक्रम लेकर फिर उपस्थित रहेंगे। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता खेमई जी और सांद्रा जी, और हमारे पैनल के पीछे राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। नमस्कार कहता हूँ।

सर्व कार्येषु सर्वदा। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। हनुमान है नाम महान, हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेड़ा पार, हनुमान करे बेड़ा पार, जो जपता है नाम हनुमान, जो जपता है नाम हनुमान, होते सब दिन एक सा।

रखे राम जैसे रखे राम बस वैसे ही हमें रहना ही पड़ेगा। कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बरसते रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, शुभ दिन हम सभी के लिए। जग में सुंदर है एक ही नाम, जग में सुंदर है एक ही नाम, बोलो जी बोलो जोर से जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय हनुमान।

संकटमोचन हमने यहाँ पर श्रवण की है, आपके लिए पेश किया जाता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, कहते हैं कि स्वर्ग में देवता भी अभिनंदन करता है, स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करता है जो हर पर हनुमान जी का वंदन करता है। और कहते हैं भी कि सुबह सुबह ले हनुमान जी का नाम, सुबह सुबह ले हनुमान जी का नाम, बाबा बाबा सिद्ध करे सब काम।

बजाए या तू प्यारे हनुमान चुटकी अवश्य बजाए जा, बजाए जा और हमारा कृपा होते ही जाएगा। आपका दिन आज का दिन, आपका दिन आज का दिन आपके लिए अत्यंत अत्यंत शुभ होवे।

0: इतने शक्तिशाली हो।
1: हनुमान जी का नाम लेते ही भूत प्रेत क्यों भाग जाते हैं? इतिहास में ऐसा क्या हुआ था कि उनके नाम से ही सारे राक्षस और तंत्र मंत्र कांपने लगते हैं? दरअसल रावण का एक छोटा भाई था अभिरावण। वो काला जादू और तंत्र विद्या में बेहद निपुण था। रामायण के युद्ध के दौरान जब श्री राम और रावण का संग्राम चल रहा था, तब अहिरावण ने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उठा लिया और उन्हें लेकर पाताल लोक चला गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे भी पाताल लोक पहुंच गए। वहां हनुमान जी और अहिरावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अहिरावण किसी भी तरह से मारा नहीं जा रहा था। तब हनुमान जी को ध्यान हुआ कि अहिरावण की मृत्यु तभी होगी जब पांचों दिशाओं में जल रहे दीपकों को एक साथ एक ही समय पर बुझाया जाएगा। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना रौद्र रूप, पंचमुखी हनुमान। इस रूप में उन्होंने पांचों दिशाओं में जलते दीपकों को एक ही क्षण में बुझा दिया और उसी पल अहिरावण का अंत हो गया। उस भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक कांप उठे थे। तो आओ सब मिलकर बोलें हनुमान जी का नाम।
2: छोटा रूप में हमने सुन ली है कि कहा के पंचमुखी हनुमान क्यों ऐसा उत्पन्न हुए हैं, किस कारण, क्योंकि उनको चाहिए था ये पांच दिशा में जो दीपक बुझाना था, इसलिए वो पंचमुखी धरे और एक ही साथ में वो पांच दीपक जो है वो बुझा दिए है, तो इसमें जीत हुई। इसलिए कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।

0: खेला अपना सबसे खतरनाक दाव। पाताल लोक के महातांत्रिक सम्राट अहिरावण को बुलाया गया। एक अंधेरी रात जब पूरा शिविर सो रहा था, तभी माया और तंत्र की शक्ति से अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें सीधे पाताल लोक ले गया, जहां सूर्योदय से पहले मां भवानी को उनकी बलि चढ़ाई जानी थी। जैसे ही विभीषण को इसका पता चला, उसने हनुमान जी को सूचना दी और हनुमान जी बिना एक कल गवाए पाताल लोक की ओर दौड़ पड़े। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो किसी भी योद्धा के लिए अविश्वसनीय था। राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनके चारों ओर पांच दिशाओं में जल रहे थे पांच दीपक। अहिरावण हंसते हुए बोला,
1: इन पांचों दीपकों को एक साथ बुझाए बिना मुझे कोई नहीं मार सकता।
0: एक शरीर एक दिशा, लेकिन यह चाहिए था पांच दिशाओं का प्रहार। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना सबसे अद्भुत रूप, पंचमुखी हनुमान। पूर्व में वानर, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह और ऊपर हयग्रीव। पांच मुख, एक साथ प्रचंड श्वास और एक ही पल में पांचों दीपक बुझ गए। अहिरावण की सारी शक्ति उसी क्षण समाप्त हो गई और अगले ही पल उसका अंत हो गया। कहा जाता है पंचमुखी हनुमान के पांच मुख केवल रूप नहीं बल्कि पांच दिव्य शक्तियां हैं, विजय, निर्भयता, सुरक्षा, समृद्धि और ज्ञान। इसीलिए पंचमुखी हनुमान को चारों दिशाओं का दिव्य रक्षक माना जाता है। जब भक्ति और शक्ति साथ खड़ी होती हैं, तो पाताल की अंधेरी ताकतें भी टिक नहीं पाती हैं। अगर आपको भी लगता है कि भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है,
2: ऐसे ही है, भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति है। मानते हो और विश्वास करते हो तो आप पे ये भी लागू है। हम सब पर ये जो मानते हैं और जानते हैं और मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन पर ये लागू है।

0: कि जो मिलना है प्रभु राम से, जो मिलना है प्रभु राम से, तो मिल पहले श्री हनुमान से।
1: जब राम जी और लक्ष्मण जी पाताल लोक में कैद हो गए तो हनुमान जी ने अचानक 5 मुख क्यों धारण किए और वो 5 मुख आज भी संकट मोचन क्यों कहलाते हैं? आइए इस रहस्य को समझते हैं। रामायण युद्ध के दौरान जब रावण हार की कगार पर था, उसने अपने मायावी भाई अहिरावण, पाताल लोक का राजा, को बुलाया। अहिरावण ने छल से विभीषण का रूप धारण किया, हनुमान जी को भटकाया और राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। अहिरावण की जान 5 अलग अलग दीपकों में छिपी थी। 5 दिशाओं में रखे गए, एक साथ बुझाना असंभव। जो 5 को एक साथ बुझाएगा वही उसका वध कर सकेगा। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, समझ गए कि 1 मुख से ये काम नहीं होगा। तब उन्होंने दिव्य रूप धारण किया, 5 मुखी हनुमान। 5 मुख एक साथ प्रकट हुए। पूर्व दिशा में हनुमान जी का वानर मुख, बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक, दुश्मनों पर जीत दिलाता है। दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, भगवान विष्णु का उग्र रूप, राक्षसों और बुरी शक्तियों का नाश करता है। पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, विष, सर्प और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। उत्तर दिशा में वराह मुख, पृथ्वी का संतुलन, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक। ऊपर आकाश दिशा में हयग्रीव मुख, ज्ञान, विद्या और बुद्धि का स्रोत, अज्ञानता का नाश करता है। हनुमान जी ने एक ही फूंक में 5 दीपक बुझा दिए। अहिरावण का वध हुआ, राम लक्ष्मण मुक्त हुए। श्री राम ने गले लगाकर कहा, बजरंग बली, तुम्हारा ये रूप कलयुग में भी भक्तों की रक्षा करेगा। हर संकट में 5 मुखों वाली शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। रहस्य ये है कि 5 मुखी हनुमान कोई सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि पूर्ण सुरक्षा का कवच है। 5 दिशाओं से 5 प्रकार की बाधाओं से बचाते हैं। घर में 5 मुखी हनुमान की मूर्ति रखने से तंत्र मंत्र, बुरी नजर, भय, अज्ञान सब दूर होते हैं। तभी से भक्त पुकारते हैं जय 5 मुखी हनुमान, क्योंकि बजरंग बली सुनते हैं हर दिशा से, हर संकट में। कमेंट में जय 5।
0: आपको हमने 2-3 बार ये बजरंग बली के 5 मुखी के कथा सुनाए हैं। मैं खुद भी सुनती हूँ ताकि हमको पता चले कि 5 मुखी जो है, 5 मुखी हनुमान, इनका कथा, इनका रहस्य क्या है, ये हमको पता चले। तो आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ऐसे कथा मिलता है सुनने के लिए। द एनख एख्त फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कहते कि हाथ से किया गया दान, हाथ से किया गया दान, मुख से लिया गया प्रभु श्री राम का नाम, कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय श्री राम, जय जय हनुमान।

0: और आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht.

ये सुंदर सा नगमा आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण जी की आवाज़ में। और फिल्म का नाम हम आपसे बता दें, फिल्म का नाम साथी। साथी फिल्म से निकाल दिया गया है आपके लिए उदित नारायण, और देखे तो कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है। लाइव प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है 2005 में, ये सुंदर सा गीत पिक्चराइज किया गया है।

अवश्य अवश्य गालो मुस्कुरा लो मेरे प्यारे सुनने वालों, और महफिल महफिल अवश्य सजा लो। कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम कठिन होता है, लेकिन वही आपको ऊंचाई तक ले जाता है। सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम कठिन होता है, लेकिन वही आपको ऊंचाई तक ले जाता है। द एस्ट स्टेप ऑफ द लैडर, द एस्ट स्टेप ऑफ द लैडर फॉर सक्सेस इज मूवी लक, मार दिस सेल ऑफ द स्टेप ब्रेंग, दिस सेल ऑफ द स्टेप ब्रेंग यू नार द ग्रोते हॉगते।

और क्या। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का नाम। हाँ हाँ और क्या और क्या। अलका याग्निक जी और देखे तो अभिजीत अभिजीत भट्टाचार्य ने सुना दी ये सुंदर सा गीत जो आपके लिए चुनकर और लाई हूँ सुनाने के लिए प्लेलिस्ट पर। तो बहुत से ऐसे हसीन मधुर गीत आपके लिए सेलेक्ट करके लाई हूँ। हाँ ये सब गीत तो पहले से तैयारियाँ करना पड़ता है और काम भी आसान हो जाता है। कहते हैं कि मोती फेरन द बोस कप ऑफर सक्सेस। दोर सेटिंग्स फॉर मोहन, दोर सेटिंग्स फॉर मोहन, सक्सेस वर्ड बहाल दोर दखेने दी सेल्फ इन मोइलके तेदन नित अपगेवन। हरकेंट यू सेल्फ दारिन? ऑब्स्टाकल्स आल्स कंसन, ऑब्स्टाकल्स आल्स कंसन, hindernissen zijn geen reden om te stoppen. No. Hindernissen zijn geen reden om te stoppen, maar een teken om vooruit te gaan. Stille inspanning, werkt in stilte hard. Jouw succes zal vanzelf geluid maken.

उदित नारायण जी की आवाज में, चेहरा तुम्हारा दिल में जिस दिन से उतर गया, हाँ तो ख्याल ही ख्याल आपका आता है, और क्या करे ये बेचारा दिल। आदत सी हो गई है हर वक्त तेरे बारे में सोचने की। अब तो ऐसा लगता है तेरी यादें जान

जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना, भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह के आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, हमें नहीं आता अपना दर्द का दिखावा करना, बस अकेले रोते हैं और फिर से सो जाते हैं।

वाह, दिल छू जाने वाले ये सुंदर सा गीत रफी जी के आवाज में आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम आप अवश्य जानना चाहते होंगे। फिल्म का नाम शोला और शबनम। धर्मेंद्र जी इसमें अपना कार्यकाल कलाकार इसमें दिखाई है। The handsome guy, Tharmin.

ये भी कहा है कि जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी है, जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। जिंदगी में आप कितने बार हार, जिंदगी में आप कितने बार हारे या कोई, ये कोई मायने नहीं रखता। जिंदगी में आप कितने बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप कितने बार हारे हुए ये मायने नहीं रखता। Het maakt niet uit hoe vaak je in het leven verliest, want je bent geboren om te winnen. Ja, je bent gewoon geboren om te winnen.

जगजीत सिंह जी को प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। जगजीत सिंह की ये जो ज़िंदगी है, हाँ, अब ये ज़िंदगी जो है इसे हमको डील करना चाहिए, इसे इन्हीं में हम सफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये वस्त्र नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वस्त्र नहीं है कि आज उतार दो कल पहन लो, नो। कपड़ा हम पल भर में बदल लेते हैं, बल्कि ये शरीर, इसे हमें लापू कर के फिर आगे बढ़ना है। यानी कि लापू करना, इसका मतलब ये है, अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसको ठीक कराने के लिए

हर एक पल हंस कर और बिताना चाहिए। क्या समझे ऐ दोस्त, जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती, जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देते उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। गलत तो नहीं थे हम पर खुद को

तेरी यादों का कितना हसीन एहसास है, तेरी यादों का कितना हसीन एहसास है, लगता है जैसे तू हर वक्त मेरे पास है।

आकृति मेहरा और अनूप जलोता, अनूप जलोता ये दोनों ये सुंदर सा भजन हमको सुना दी है प्रोग्राम में, हमने यहाँ शामिल कर

ये ऐसा प्यार हुआ तो भी ऐसा इंसान से हुआ जिसे मिलना बस में नहीं और पाना किस्मत में नहीं। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, जो लोग दिल में होते हैं वो लोग किस्मत में नहीं होते। जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आज़ाद कर देना चाहिए। आपके लिए मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में।

0: जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।
1: आँख

जी दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन सिस्टर का फिल्म में मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का, बोले कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं। और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जा दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी। फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकदिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकदिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार मालासिदा ने काम किया है। चलो एक गीत और, ये बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा, करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का, ये निकाला हुआ गाना है, मेकर का है जे। फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

जी दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं करी तो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नेहा ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी में, आप लोग कह रहे चलते नेहा में जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों, सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश, ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नेहा ट्विंस में, आँखियों का नूर है तू।

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, जुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नेगेटिव 5/6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नेगेटिव 5/6 तक में, जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एल महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम क्या इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर महमूद इन गोवा ने कितने फैंस शस्तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखेंगे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मिल के सुना, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सबके नाम है दोस्तों।

0: ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। जोहर महमूद इन गोवा नेकन तीन फैन सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू, जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है, यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज की तरह हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है, जहां तक ये आवाज पहुंचे और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के जरूर सुनाएंगे। जहां पे जिस घर में दुख है या मातम है, पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है। जहां पे खुशी है वहां पे भी हम साथ हैं। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ हैं। चलो दोस्तों, हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे। एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको जरूर सुनाने वाला है। मिलकर हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है। मूवी हम जफर, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी। हम मिलकर सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है देखा जाए तो, देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं और उम्मीद है आप लोग के जरूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा जरूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफर के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज है किसी राह में किस मोर पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी। आनंद जी, हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ। नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे, अभी नहीं, ये तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों।
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोड़ पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए। मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना, अल्बम मूवी हीरा तमन्ना है, और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी की, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जा दोस्तों, मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है। ब्याह सूर्य थे दोस्तों, आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहुल देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम। आप ही तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, और आप सब चून है द एफ अगेन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग 1987 तक का है। और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एर्दे बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है, मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

0: दीवान।
1: जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने भी गीत को सुना है, और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले सॉन्ग को लगा ही चुके हैं, अगले गाने को, और देखा जाए, देखिए तो कौन मूवी, दो कल्याण नहीं आतन शस्त्र का है यार। और देखा जाए, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग, लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्मा श्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का, ना जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मुँह लगी, लता मंगेशकर की आवाज़ है और सब कोई सुनो कोई जा मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया मूवी दर्द नेखंतिर इन तख्तख का जिसमें हेमा मालिनी रजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर नेखंतिर टू इंसेस्ट का जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और दक्षिण लता मंगेशकर म्यूजिक शंकर जयकिशन और लायरी से साई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर 1962 का। चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन आजाद मुद के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, I smile on my lips and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata.

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊँ, मैं तुझ में समा जाऊँ। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

तौबा मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तन सस्त का जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम को अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मरुदम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा जीनातमन। जीनातमन ने काम किया है देव अनंत जीनातमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एफर ग्रीन लव फ्रॉम हिंदुस्तानी रेडियो से।

दोस्तों दम मारो दम, अभी आप सुन रहे थे दम मारो दम, और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो हो हो शंबा हो हो हो। चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिल के इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जहां रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पपी लहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पपी लहरी का ये डांस नंबर है, याद आ रहा है पपी लहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पपी लहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जय दोस्तों, पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर, इसमें काम किया है मिथुन चक्रवर्ती, याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं दिलर मेहंदी की तरफ, और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले चले, बल्ले बल्ले सब सुनते हैं। सुखवार है, वीकेंड आ गए हैं, रेड पुस हो या ब्लैक पुस हो उसके तफरा पर रखिए, एक बॉल मारिए, डोसा पकाइए, खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए, क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तो बल्ले बल्ले दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुने थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोग सुनाते हैं। देखा जाए तो बोले तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपके सुनाते हैं बोले तारा रा रा रा। क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें। देखा जाए इसमें तो है कुछ और, हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा से कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

जी हाँ दोस्तों, जावने जा ओ मेरी जाने जा इर्ष दे बिरमन। जी हाँ दोस्तों, चलो हम घड़ी की तरफ देखते ही तो क्वार्ट फोर फिर है, इसका मतलब है हम दो गाने और चलाएंगे, उसके बाद न्यूज बयाम चलेंगे और हमारा कोलेगा, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा कोलेगा, लेकिन एक ऐसा कोलेगा फिन से ले लेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पढ़ते हैं आगे और बोलो तारा रा रा दिलर मेहंदी, पंजाबी गाना है दोस्तों।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सो रहे थे, चलो हम चलते हैं। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमत रहमतुल्लाह बरकातु हो और खुदा हाफिज हो। हर एक जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं दिन साख के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम बहुत विदाई लेंगे। दिन साख के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा, राजन द्वारका।

कुदरत का है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना, प्रेम का जहां है हरगिज़ न भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, आदाब बरसो। 3:02 बीत गया है, फाहौन हिंसा रेडियो पर आप चुने हैं। शुक्रवार है, अगस्त के 21 तारीख हो गया है दोस्तों, फाहौन हिंसा रेडियो पर आप चुन है। जन परिवार घर में दुख है, दुख में हम साथ देते हैं, जहां पर खुशियां है बहुत से बधाई पेश हो। प्रोग्राम गीतों का संगम और चंद मिनट के बाद भैया रोमियो होस्ट के जरिए आप न्यूज बरिश्त सुनेंगे। आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं भैया अनिल सरजू का प्रोग्राम अभी आप जोर तोर से सुना, और सामने बैठा हुआ है साहेब यूसुफ सेतू।

लगभग 4 बजे तेलुगु न्यूज पर देखते रहेगा दोस्तों। के बाद साढ़े चार के अंदर मिले जुले की से आपका दिल बहला होगा। 4-5 के बीच आइटम जो रहेगा शाम को वो है तेरे, जो तेरे से शुरू होता लगभग आधे घंटे तक आपके लिए मैं पेश करूंगा।

0: सिमर।
1: हाय दिलबर, दिल से हारे। ये दिलबर तो दिल से हार गया है दोस्तों। आज सुबह के बाद है, जब शुक्रवार है, तो डेन हाग का जो कॉक्स रात है पॉपुलर ग्राउंड के आसपास, वहाँ पर आग लगा दोस्तों, और दो लोग को एम्बुलेंस ले गया है, सिकन है इस।

है रंग दे। दोस्तों बारिश का मौसम है, अगर आपको बाहर निकलना है तो अपन छतरी पराफली मत भूलना। अभी का हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। 3:17 बीत गया है। काम जॉब के रिव्यू किस तरह कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0C4 तक 3 5 2 8 2 8 4C4 पर आपको तार करना।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। दोस्तों धीरे धीरे सोमर बीत रहा है या बीत गया है। जब मौसम की तरफ देखता है तो बारिश होता है, घाम निकलता है, फिर भी जो हमेशा 2-3 साल के बाद है, उन दिनों में जो सोमर रहता तो शादी विवाह चारों कहती साल भरल रहता और न्योता चारों बगल से आता कि लोग फकांसी सोचते जाए कि न जाए फकांसी, वहाँ पर शादी है, वहाँ ब्याह है, वहाँ फरियारी है। लेकिन इन दिनों में बहुत कम हो गया है, सोमर बीत गया है। आप अपने कम बोला, हमें एक को न्योता न मिलल कि भैया हमारे बिटवा या बिटिया के ब्याह है, तो हमने निकाह हो गया है, इसे शादी न हो है या हमें सब न्योता नहीं पता नहीं। फिर भी आपके साथ जैसे होते हो तो आप सोच लिए कि क्या बात है, क्या कमी है कि इन दिनों में कम शादी होता है या लव मैरिज कम होता है, पता नहीं। फिर भी अगर आप और ज़्यादा खबर हो इसके बारे में तो आप तार कीजिए 0 से 5 3 5 2 2 फिर से पर, तो बातचीत हो सकता है उसके बारे में।

तुझे जो मैंने देखा दोस्तों उस केस में क्या हुआ है, एक फेयरनेस वाहन शोफेयर, एक फेयरनेस वाहन शोफेयर, आज सुबह के बात है, अपन फेयरनेस वाहन लेकर एक मकान में धक्का मारे लगे, बड़का के गोल हो गया है। अब मकान के बगले में एक खराश रहा और तो खराश है तो वहाँ पर भी स्कैड हुआ है। एक नरसे जो घर मकान का है वो घर पर नहीं था, लेकिन बीर वो के तार करील है, वो घर पर जो आया है तो देखा है कि उसका फोर्डर टूटा हुआ और घर वन पर एक बड़ा सा होल है। ये हुआ है उस केस में आज सुबह।

कैसी कैसी मुलाकात है, क्या बात है दोस्तों। आप जानते हैं जब थोड़ा सा बारिश हो जाता है सन्नाम देश में डूब जाता है जगह, और लोग हमेशा उसके बारे में बातचीत करता है कि वहाँ का रियोल ठीक है वगैरह वगैरह। लेकिन कातवेत में क्या हुआ है बीते हुए के दिनों के बाद, बीते हुए गुंजा के बाद है। तो जब बारिश हुआ कातवेत का फिशर्स कार्य जो है एक मकान एक फ्लैट खबाओ के नीचे जितना मकान है सब में पानी भर गया, और बगल में जो डायरेक्ट फंदब्रुक का सुपर मार्ग था वो भी दिन भर बंद रहा दोस्तों, सगरों पानी भर गया रहा। ये भी होलंदेश में होता रहता है।

जिंदगी उदास रहता है तो क्या चाहिए दोस्तों? फूल चाहिए, शराब चाहिए, या खाना चाहिए, या एक दोस्त चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। सोचता हूँ कि एक गीत सुनकर आपको पता लग जाएगा कि जब जिंदगी उदास रहता है तो क्या चाहिए जिंदगी में।

छुपा बादल में। दोस्तों मौसम के समाचार आपको दूंगा, फिक्स सुमर बै ट्रैकर फन ऑफ द कोस्ट ओवर अटलांट प्लास्टिक से तेल ऑन वेयर बै बैन मातक नॉर्थ वेस्टर्न विंड वर्थ एट मैक्सिमाल 20 ग्राड और फनाफट आज रात्रि को लगभग 10-14 ग्राड के बीच टेम्परेचर रहेगा। जब वीकेंड है कल शनिवार है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 19 ग्राड होने वाला, उसके बाद सोमवार रविवार को 20 ग्राड, रविवार के बाद वीकेंड के बाद सोमवार को 20 तक, मंगलवार को फिर 20 तक और बुधवार को 27 ग्राड हो जाएगा। तेरे दिल मेरे पास रहने दे, जब दे दिया तो वापस क्यों लेते हो।

हाय कजरा रे, तेरे कारे कारे नैना, छः मिनट बाकी है सरे 4 बजे में भी। सरे 4 बजे आइटम्स का शुरुआत मैं करूँगा, और आज शाम का आइटम जो है वो है तेरे हर गीत, जो तेरे शुरू होता लगभग आधे घंटे तक लोग पेश रहेंगे। आपको सिर्फ स्टूडियो में तार करना है 0C4 3 5 2 8 2 8, फिर 0C4 पर, या 0C4 3 5 2 2 0 0C4 पर आप तार कीजिए। आपके लिए मैं एक गीत जरूर पेश करूँगा।

0: है वहाँ।
1: पूरे सहे चार का वक्त है दोस्तों, और वादा के मुताबिक आइटम को शुरुआत में करता हूँ। और आज शाम का आइटम जो है वो है तेरे, और तेरे का आइटम में भाग लेता है श्रीमान आंद्रे राजकुमार। और आंद्रे ने मांग किया है, तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है, आंद्रे के लिए या आंद्रे राजकुमार के वास्ते स्पेशली सॉन्ग पेश है।

श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। सामने बैठा हुआ है दोस्तों ये आदमी और मुस्का है, मुस्की मारे ने बोला ना इसलिए कि वो गीत मांग किया है अपनी प्यारी प्यारी मशुका सिला के लिए, यूसुफ के ओर से या यूसुफ सेतु की ओर से प्यारी प्यारी मशुका सिला के लिए, बड़े प्यार और दुलार के साथ ये सॉन्ग।

बस एक रंग है, वास्तव में सही बात है, ये दोनों का सपने जो है वो तो एक रंग हो गया है। सिला जो मासुका है यूसेफ का, उन्हीं के लिए स्पेशल यूसेफ चुन कर ये गीत को पेश किया है। एक पुराना सॉन्ग चलेगा जो सबकी बार आइटम है, तेरे और तेरे के आइटम में एक पुराना सॉन्ग चलेगा, लोग कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, और हम कभी कभी कहते हैं कि पुराने गीतों का बहार। फिर भी गनक बोल है, तेरे नैनों ने चोरी किया मेरे छोटे से जिया सुरैया। जी हाँ दोस्तों, सुरैया रहमान दोनों के आवाज़ में गीत आप सुनेंगे, और ख़ास करके ये सॉन्ग श्रीमान मून जी बोध मून की तरफ से जीवन साथी माला के लिए। दोस्तों निरी अख्तर फेत का फिल्म प्यार के जीत का सॉन्ग मून की तरफ से माला के लिए।

0: दोस्तों तेरे नैनों ने चोरी किया के बाद मैं रख देता हूँ तेरी प्यारी प्यारी सूरत। उन दिनों में एक गीत बहुत हड़ताल मचाया सुनांदिस में, जब शादी रहते थे ब्याह कोई रहता तो ये गीत जरूर पेश होता था, या कोई अपन भौजी खतिन मांगे तो अपन सहेली खतिन मांगे तो सूरत प्यारी प्यारी सूरत को किसी को नजर ना लगे। कभी कभी किसी का सूरत कोई नहीं देखी फिर भी उसके लिए भी मांग लेते थे ये गीत, इतना पॉपुलर सॉन्ग ये था। तो तेरी के आइटम है, इसी आइटम में आप सुनेंगे
1: डेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल
0: फाहन हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के लिए कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए।

प्यारी प्यारी सूरत को किसी को नजर ना लगे। दोस्तों स्पॉट पर इख्तार सुनेंगे। एनईसी कल मुकाबला किया है एनईसी आमेद खान कापलान जो आईएएस का अनफदीख था उन्हें खरीद लिया है दोस्तों। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 3 साल का फरीदिख जो है तो अब वो एनईसी के साथ मुकाबला करेगा। एफसी यूट्रेक्ट 1 साल का नॉर्थ यूथ इंटरनेशनल मारियस ब्रोहल्म को भी खरीद लिया है और उन्हें भी 30 मिलियन पैसा मिला है ये अनफालर को। आयक्स इटाकुरा जो है आयक्स का स्पेलर जो एक जापानीज है या जापान का स्पेलर है ये 1 साल का फरीद को आयक्स फिर से बेच दिया है और बोर्सिया से कीना था फिर बोर्सिया को बेच के वापस दे दिया है। पीएसवी भी हिट किया है खेत्रेड़ा आप जानते हैं फेनोट का ये युक्त स्पेलर था तो लाइपसिक्स के साथ मुकाबला करता है 1 साल का इंटरनेशनल जो टी का कुमान का टीम में था वीगा के समय पे फिर भी मौका नहीं मिला उन्हें खेल खेलने को तो उन्हें पीएसवी भाड़ा पे ले लिया है। और चैंपियंस लीग का मुकाबला में फास प्ले ऑफ में नई लीग में एफ का बोडो जो नॉर्वे का है वो 20 को से जीत लिया है दोस्तों। जब 20 ये दोनों खेल जीतता और आगे जाता चैंपियंस लीग में तो उन्हें 20 मिलियन फीफा से मिलता। सिर्फ देखा जाए हो सकता है दूसरा खेल जब होगा तो 20 जीत जाए तो अच्छा बात होगा। कॉन्फ्रेंस लीग का मुकाबला भी हुआ है और कॉन्फ्रेंस लीग का प्ले ऑफ में एफसी 20 0-1 से क्वाराबाग से हार गया है जो आज़रबैजान का है। और 20 भी अच्छा खेल खेला फिर भी आप जानते फुटबॉल इस राउंड है जिस 0-1 से खेल को हार गया है। पीएसवी इट्स प्ले ऑफ ड्वेल जो है कॉन्फ्रेंस लीग का ये खेल वो जीता है और वो भी सियोन से सियोन को फिर 2-1 से पछाड़ा है

टैक्स। और जब आज शुक्रवार है, आप जानते हैं हर शुक्रवार को एयरडीवीसी में फुटबॉल का मुकाबला रहता है, लेकिन आज नहीं है दोस्तों। कल जब शनिवार है तो फोर्टिना सिद्धार्थ आज सबसे खेलेगा, और उसके बाद स्पार्टा रोटरडम एफसी यूट्रेक्ट, एफसी हेरेनवेन पेक सोले, और आखिरी में गुवाहाटी ईगल्स आडो डेन हाग। नहीं, गुवाहाटी ईगल्स आडो डेन हाग सोमवार को खेलेगा दोस्तों। क्वार्टर फाइनल के खेल का शुरुआत हो जाएगा, उसके बाद गुवाहाटी ईगल्स आडो डेन हाग के बाद पीएसवी एफसी ग्रोनिंगन, और आखिरी में एससी कैंबियर फेयनोर्ड।

दो साथी जीवन के दोस्तों, निशा मदारन। निशा मदारन भी अच्छा गायकी है और विश्वनाथ का कलाकार है दोस्तों, और उसका साथ देता है सागर मालिक। दोनों के आवाज़ में आप ये सॉन्ग सुनेंगे।

क्या कलाकार दोस्तों, निशा के आवाज़ में भी आपने सॉन्ग को सुना। एक बार फिर मैं देवेंद्र सिंह शिवनाथ और सविता सिंह का एक दूसरा सॉन्ग रखूँगा और मैं सोचता हूँ ये एक नया सॉन्ग है। 2026 में ये सॉन्ग तैयार किया गया है, लगभग एक महीना पुराना होगा। मैं भौड़ा तो है फूल ले दिन में फूल, जवानी लौट के आए ना।

0: हॉलीवुड कॉफर के बाद दोस्तों विनीता सिंह की आवाज में आप सुनेंगे चटनी सोका। ओ भोला बाबा हो
1: चकवान।

और मिस्टर री की आवाज में आप सुनेंगे डो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। ये भी एक बॉलीवुड कॉफर है दोस्तों, 2026 का सॉन्ग।

दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके, 6 मिनट रह गया है 5:30 बजने में और ये प्रोग्राम 6 मिनट तक जारी रहेगा। उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना। हे डार्लिंग आई लव यू।

मॉर्निंग आई लव यू देवानंद गाटो के आवाज में भी आप इस सॉन्ग को सुना। चला जाता है उसी नाम से दोस्तों, वहां भी हमारा कलाकार है श्रीमान कृष राम खिलावन, फरमाएंगी पहलिया।

अपनी कलाकार अपने देश का कलाकार श्रीमान क्रिस राम खेलावन के आवाज में आपने सुना पायलिया। दोस्तों चादर बिछाओ वर्मा, ये कंचन बबला का समय था, सुंदर पोपो का था, कलिप्सो किंग जिसे लोग कहते थे सुंदर पोपो, उस समय का गीत है, लेकिन ये गीत फिर से गाया गया है। हम सब मिलकर सुनेंगे किस तरह से ये गीत पेश किया गया है।

चादर बिछाओ बलमा के बाद दोस्तों, अब की बार चटनी सो का म्यूजिक चलेगा, वो भी रेवती राम रूप के आवाज में। गाना बोल है कल कटुआ।

फौजी के बहनिया के बहुत भूख लगल है खाई मांगे रे। दोस्तों फाहन हुसैन रेडियो पर आप चुन है प्रोग्राम गीतों का संगम, जारी है पूरे 6 बजे रहेगा और उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना।

0: meer informatie. www.minimsummerfestival.nl.
1: और दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ शेर और कुछ कवाली गीत से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे हमारे दोस्तों। और जो जॉनी कहते हैं कान खोल के सुन लिए हमारे मौसी लोन और हमारे भौजी लोन कहते हैं दिल में बहुत दर्द है डॉक्टर के पास गया। जी हाँ हमारे प्यारे और प्यारे दोस्तों कहते हैं दिल में बहुत दर्द है डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने गर्लफ्रेंड को हमारा फ्रेंडेन को कमी बताई। अब क्या बताए दोस्तों, आप खुद ही सुनिए कि अगर जल्दबाजी में शादी करके जीवन बिगाड़ोगे सोच समझ कर करोगे तो कौन सा तीर मार लोगे हमारे दोस्तों, कौन सा तीर मार लोगे। आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी और कवाली से भी आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। आओ सुना जाए। और ये है परमाश्री मन्ना देई आशा भोसले फिल्म का नाम है बरसात की रात और मधुबाला भारत का ये फिल्म है ना तो करवेटे की तलाश है और ये पुरानी गीत है। आओ मिलकर सुना जाए हमारे प्यारे दोस्तों।

ना तो करो की तलाश है मन रे अशवोश्री का, ये गीत वे फिल्म के नाम है बरसात की रात, मधुबाला और भारत का ये गीत। दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ शायरी सुनाएंगे और कुछ चुटकली शायरी आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। दोस्तों कहते हैं माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, माफ करो परमेश्वर ये बड़ी भूल हमारी है, शादी कर लिए जिसे हमने वो तो निर्धन नारी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात कहते आजकल के जमाना में कितने लोग हैं जो बहुत टिकटॉक पे जाते हैं, कितने लोग भैया फेसबुक पे जाते हैं, कितने व्हाट्सएप पे जाते हैं, कितने लाइव बातें करते हैं और क्या क्या होता, तो उस सब के लिए एक शेर हम यहाँ से कह देते हैं कि तो टिकटॉक के रानी, अरे टिकटॉक के रानी तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूँ फेसबुक का राजा, तू है टिकटॉक के रानी और मैं हूँ फेसबुक का राजा, मिलाना है तो व्हाट्सएप पे आ जा। जी हाँ दोस्तों, जब मिलना है तो जॉनी के व्हाट्सएप पे आ जा। और दोस्तों और यहाँ से हम कुछ प्यार भरे गीत आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते बीबी भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, बीबी भी हक जलाती है, माँ भी हक जलाती है, शादी के बाद आदमी कश्मीर हो जाता है भैया। और चलते हैं फिर मिलोगे कभी, कभी फिर मिलोंगे ये रात फिर ना आएंगे। और ये गीत है आशा जी के और परमा श्री मोहम्मद रफी और विश्वजीत का फिल्म शर्मिला टैगोर जिसमें काम किया है, आओ मिलकर सुना जाए।

और फिर मिलोगी कभी, और ये रात फिर आएंगी, ये रात फिर आएंगी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी कुछ चुटकुले यानी फनी शेर, कुछ हंसमुख फनी शेर आज सुनाएंगे कि मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत। खूब ठीक से सुनना दोस्तों, मैंने जिंदगी से पूछा तो खूबसूरत है बदसूरत, पलट कर उसने जवाब दिया जैसे बदमाश तेरी सूरत। और दोस्तों ये सब प्यार भरी बातें आज क्यों हम लोग के बताते हैं कि कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, कोई नहीं आएगा मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा, एक मौत ही है जिसका मैं वादा नहीं करता। ये तो सच बात है ना दोस्तों, आप सब कुछ वादा कर सकते हैं लेकिन मौत कब आ जाएगा इसका आपको और हमें मालूम नहीं है, तो वो वादा तो आप कर नहीं कर सकता है ना दोस्तों। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी निकली गलीब, जमीन मिले तो बंजर और आदमी मिले तो खंजर। तो हम जाते हैं दोस्तों, मेरे पैरों में आम घुंघरू बांधो फिल्म के नाम है सुंगरुस नई खतीन अख्तशस्त्र का, जिसमें दिलीप कुमार ने परमा और खन्ना ने काम किया है, परमा शिन मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और मेरे पैरों में क्या बांधेंगे भैया, हंडकड़ी नहीं बांधना, और जब बांध दो घुंघरी तब नाच के घुंघरू हम सुनाएंगे कि हम क्या और कैसे नाचते हैं। और दोस्तों, और यहाँ पे हम बताते हैं कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं कि पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं। कल क्यों और मिले, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ता कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। नौ के रसराश कि कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं, कल कोई और मिले हमें तो ना भुलाना, क्योंकि कुछ रिश्ते जिंदगी भर याद आते हैं। तो ये सब बात है दोस्तों, और कहते हैं मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, मेरे दिल भी ले गई मेरे चैन भी ले गई, हट हो गई जब जब मैंने देखा वो मेरे 5 रुपया के पेन भी ले गई। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं, और ये भी गीत है, और ये है गाम, और ये है मुकेश का और नैतिक लता मंगेशकर का ये गीत है, धीरे धीरे बोल कोई जोर से ना बोलिए, नहीं कोई सुन ना ले, और जब कोई सुन ले तब बप्पा मारी, तो जोर से ना बोलिए, धीरे से बोलिए।

ठाकुर धीरे धीरे बोल, अरे धीरे धीरे बोलियो, नहीं जब कोई सुन ले तो बप्पा मैया मारी, और अगर सुन लेगा भैया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे कि कहते हैं किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, किस किस का नाम ले अपने, इतना ढेर आदमी भैया जो बर्बाद करी से यहाँ बताई से, किस किस का नाम ले अपनी बर्बादी में, बहुत लोग आया देने दुआएं मेरे शादी में। तो जितने लोग आए थे दुआ देने को शादी में, वो सब भाग्यदार है दोस्तों, यहाँ पे बताए गए हैं उसके बर्बादी में। आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया, दिल में तो होती ही नहीं होता, तो साला टूट का से टूट कैसे जाता है। तो दोस्तों तीसरी कसम की ओर हम बढ़ते हैं, और तीसरी कसम एक फिल्म है, वो है नेहती शस्त्र शस्त्र के, और वो है मैथिली मुकेश ने इस गीत को गाया है, और ये बहुत पॉपुलर गीत है दोस्तों, कोई ज़माना में अभी तक लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। तो हमने सोचा कि इसको हम चला देते हैं, कुछ खूबसूरत पल याद आते हैं, अभी बताए थे ना दोस्तों, पलकों पर आंसू छोड़ जाते हैं मत भूलना, कल कोई और मिले तो हमें ना भुलाना, और क्यों, क्योंकि कुछ रिश्ता जिंदगी भर याद आते हैं। और हम चलते हैं इस गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

और सजनरी, और झूठ मत बोलो, और ये झूठ बोलना कभी कभी लोग को ये धंधा हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ गीत में बताई गई है कि झूठ मत बोलो, अगर जो झूठ बोलेंगे भैया तो कौआ काटेंगे। और माइती मुकेश इस गीत को आपको सुनाई है, फिल्म का नाम है तीसरी कसम, फनी खती होंद इनसेसन सस्त। दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बताते चलाते हैं, बढ़ाते हैं। कहते हैं दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। दिल में कोई गम नहीं, बातों में कोई दम नहीं। ये ग्रुप है नवाबों का, यहां कोई किसी से काम नहीं। ये भी कोई एक शायर है दोस्तों। कहते हैं रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, रास्तों में पत्थरों का कमी नहीं होती, दिल में ख्वाबों का कमी नहीं होती। हम चाहते हैं उनको अपना बनाना, पर उसके पास अपनों को कमी नहीं होती। वो हमें चाहते हैं ने भैया, तो हम ईटा मार के पत्थर चलाकर और क्या करेंगे। तो ये बात होते हैं, और मोहब्बत करने वालों को और मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को सेवा कर। दोस्तों आप लोग बैठक गाना में ये गीत सुना होगा, कितने लोग बोले योकर ऐसा गाना है, योकर ऐसा गाना है। लेकिन आज हम आप लोग को एक ओरिजिनल गीत को सुनाएंगे जो नाइटिंगेल लता मंगेशकर इस गीत को गाए हैं, और फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरी आंगन की नीखंतीन अख्तन जीवन तक का। और कितने हमारे सूरीनाम के कलाकारों इस गीत को गाए हैं, और अन्य देशों के कलाकार भी इस गीत को गाए हैं। और जिसको मालूम नहीं है तो वो बोले वो अडमिया गाई से, वो अडमिया नहीं दोस्तों, ये गीत हमारा दीदी स्वर्गीय और हमारा लता जी नाइती की लता मंगेशकर ये गाया हुआ गीत जो आज हम आप लोग को ओरिजिनल सुनाएंगे। आओ मिलकर सुना जाए।

छाप तिलक सब छीन ली और मुझसे नैनाल मिलाई की। और दोस्तों उसी दिन से व्हाट्सएप से हमें नफरत हो गई। आप जानते किस लिए ना? ये व्हाट्सएप तो आज पूरा दुनिया में चलते दोस्तों। और कहते हैं उसी दिन से व्हाट्सएप से नफरत हो गई जब बाल कटवाते के लिए आदमी ने चंदा मांग लिया। ये कौन सा बात है दोस्तों? और उसके बाद हम चलते हैं प्यार भरी बातें और प्यार भरी गीत आज हम आप लोग को सुनाएंगे दोस्तों। और सुनाता ही रहेंगे। हम चलते हैं एक गीत की ओर। वो भी है नाइटिंगेल लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है। और ये मूवी के नाम फिल्म के नाम है असली और नकली। असली और नकली। और ये फिल्म बना है 1966 में। और यहाँ पे बताई गई है दोस्तों कि इस देवानंद ने फिल्म में काम किया है और कितने लोग हैं जिसका नाम भी देवानंद लोग फिल्म में देखकर धर देते अपनी बेटी को। और यहाँ पे बताई गई कि तुझे हम अपने जीवन की डोर से बांध लिया है, ना ततई से बांध लिया है, केती से बांध लिया है, अपने जीवन के डोरा में, मतलब अपन लीफस पार्टनर तुझे हमने बना लिया है। और फिल्म के नाम है असली और नकली। आओ मिलकर सुना जाए।

और मेरी जीवन की डोर पर। और क्या हुआ भैया, जीवन की डोर से बांध लिया है। और जीवन की डोर में कौन बांधते हैं, जब किसी से आपको आपसे प्यार हो जाता है और अपनी जिंदगी उससे और चलाना चाहते हैं और कहते हैं ऐ चांद कुछ बेवफाई के, यानी कि टूटा हुआ दिल का शेर हम आप लोग को, जुदाई का शेर आप लोग को हम। और यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ऐ चांद चला जा क्यों आँच है मेरे चौखट पर, ऐ चांद चला जा क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गई वो शक जिसका धोखे में हमने तुझे देखता था, यानी कि उसका जो लड़की था या लड़का उसका वो चांद देखता था, अब वो धोखा से चला गया। तो वो कहते हैं कि ये चांद असली चांद को कहते हैं जो रात को निकलते हैं, कि ऐ चांद चला जा क्यों आज को क्यों आया है मेरे चौखट पे, छोड़ गया वो शख्स जिसका धोखे में हमने तुझको देखते थे। ये बात है। और कहते हैं कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, कोई रोते अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लेना, इस हाल में अक्सर जुदाई जीत जाती है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी करीबी, किशोर जी और लता जी का फिल्म का नाम है आसपास। 901 तख्त का ये गीत है जिसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा भी इसमें और काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

और तुझे दिल में जब हम बन कर लूंगी तब उसको चाभी हम उठाए के बोले पानी में बिक देवे, और जब पानी में हम बिक देवे तो कैसे तू दिल में से निकलिए, ये बात हुआ है हमारे दोस्तों। और दोस्तों ये गीत क्या होगा, और ये गीत है चल चमेली। अरे चल चमेली, और कहाँ चलेगा चमेली, हाँ प्रेम बाग में चल। फिल्म के नाम है क्रोधी निखते इन तख्त का, ये फिल्म है, आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

देश है मेरा और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला, कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म मेरे भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जा है, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सयार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी कि फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बाहर प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी और तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेख होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है, जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

पागल प्रेमी आवारा। दोस्तों और ये गीत क्या होगा दोस्तों, ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

0: तेरी कमाल। और इस गीत को अलका याग्निक ने और उदित नारायण ने और यानी कि गाया है, और फिल्म के नाम है राजा। मधुरी ऋषि संजय दत्त का ये फिल्म है दोस्तों।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेटन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: इनगेस्क्रेवन एन गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबीडन रजिस्टर फान द ऑर्डे अलगेमीने रेक्सप्राक्टाइक हीरोंडर फाले बुर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले जाके बस्तुर्सरेक्ट एन स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एन फामिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासी जाकेन ओमगांग्सरेगेलिंगें औडरशाप एन एरकेनिंग जेगदरेक्ट मेट फोलगेंडे गेबीडन जेगदबेस्केर्मिंगसरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लास en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt, met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat melden Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: और यहां से हम अपना कुछ प्यारे प्यारा प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग भी आप लोग को हम सुनाएंगे। और कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो। जब अगर मोहब्बत में कोई और आ जाएंगे तो कैसे मनाऊंगा। और कहते हैं कि किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर तू मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इंतहान, वो इंतजाम रह रही है। एक बार फिर दोस्तों, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा का वो इल्जाम दे रही है। दोस्तों हम चलते गीत की ओर कि बोल मेरे तकदीर में क्या है, और मेरे हम सफर अब तो बता। और इस गीत को आओ मिलकर सुना जाए, प्यार भरी गीतों के बहार प्रोग्राम हम लेकर चलते हैं। मैती मुकेश नाइटिंगेल के लता जी इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता, और फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता। दोस्तों जॉनी नंबर वन है, आप लोग को हम बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हर शुक्रवार को शाम को 6 से और रात्रि के 9 बजे तक चलते हैं, मंगलवार को दिन में 5 से 6 बजे लेक सुरिनामी न्यूज, और रविवार की सोमवार को दिन में 1 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज है दोस्तों। और आपको हम बता देते हैं कि लोग जो इसको मालूम नहीं है, हमारा फ्रिक्वेंसी जो है हम सब AM पे अब नहीं है दोस्तों। दिस मीन्स दी डेंक ए हमारा रिवॉर्म कुछ भले नहीं मीन्स आज अंदेया बी प्लस रेडियो है दम पास क्वेंसी ऑन लॉइस्टर ऑफ अलेन ऑफ द इंटरनेट, और हमारा फ्रिक्वेंसी है 195.93 मेगा हर्ट्ज पर, और नहीं कनाल 8A DAB प्लस रेडियो पर हमारा प्रोग्राम रेडियो फाहून के प्रोग्राम आप सुन सकते हैं, अपने गाड़ी में भी सुन सकते हैं दोस्तों। और हम कहते हैं यहाँ पर कि कहते हैं मरे तो लाखों हो गए तुझ पर, मरे तो लाखों हो गए तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ दोस्तों। मुझ पे पाने को मुझे पाने के तुम जिद ना करो, मुझे पाने का तुम जिद ना करो, किसी को चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं किसी की चोरी हुई मोहब्बत हूँ मैं दोस्तों। और यहाँ से हमारा प्यार भरी गीतों का और बाहर नामक प्रोग्राम हम चलाते हैं लाइव रेडियो फाहुन के माध्यम से हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और हम चलते हैं फिल्म ब्लैकमेल के ओर, हम चलते हैं पल पल दिल कोई पांच किशोर साहेब ने इस गीत को गाया है, आओ मिलकर सुना जाए।

पल दिल के पास सिर्फ तुम ही रहती हो। किशोर साहब ने इस गीत को सुनाया है, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी के कुछ लम्हे, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है, यादों में कुछ लोग खास होती है। यूं तो वो दूर होता है नजरों से, पर उनकी एहसास दिल के पास होती है। प्यार करने वालों के लिए कुछ प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि तेरे हर नाकामी को कामयाबी में बदल दूंगी, तेरे हर सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। ऐ दोस्त हम खुदा से दुआ ऐसी करेंगे कि तेरे हर गम को खुशी में बदल देंगे। कुछ प्यार भरी शेरें हम आप लोग को और सुनाते हैं दोस्तों। आओ चला जाए एक और गीत की ओर, और वो है वो भी फिल्म हरियाली और रास्ता कहे, जो 1966 का ये फिल्म है। मनोज कुमार और मालहा सिन्हा इसमें काम किया है। आओ चलकर और इस गीत को मजा लूटे।

चला हूं और खुद उसके और क्या क्या प्यार भरी मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों अपनों के बीच बेगाना हो गए हम, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार का लम्हे अनजानी हो गई है। जहां पर फूल खिलते थे, जहां पर फूल खिलते थे कभी, आज वहीं पर वीरान हो गए हैं। ये बात है दोस्तों, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारे दिलार में उसका क्या होगा। हमारे प्यारे सुनने वालों, तो हम चलते हैं एक गीत के ओर, वो है कभी कभी का, फिल्म कभी कभी का ये गीत है, मैं पल दो पल का।

और इस गीत के बाद में हम चलते हैं एक मोहब्बत भरी गीत की ओर। लोग बचपन पर बहुत प्यार किया है और जो बचपन पे किसी को प्यार किया है उस सब के लिए यहाँ पर एक शेर है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है, ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है, उसकी पसंद उसकी ख्वाहिश मिल खुद से को भूल जाता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर मिटाता है, दोस्तों बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है, बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, ना जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। तो सबके लिए यहाँ पर हम एक गीत को चलाते हैं कि बचपन का प्यार कभी भुलाना नहीं, आओ मिलकर सुना जाए।

और बचपन की मोहब्बत को दिल से दुआ करना। और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमारा चलते हैं। और कहते हैं, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है हमारे प्यारे दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने क्या था और मुझे हुआ था। उसने किया था और मुझे हुआ था। दिट इज गवेल्ग मोई दोस्तों, कोर्ट मार हेल मोई। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसे किया था, उसने मोहब्बत किया था और मुझे मोहब्बत हुआ था। हमारे प्यारे दोस्तों, ये सब प्यार भरी शायरी और आपको हम यहाँ से सुनाते हैं कि जाओ जाओ जाओ ढूंढ लो, हम सबसे ज्यादा चाहने वाला मिल जाए तो खुश रहना। जाओ ढूंढ लो, हमसे ज्यादा चाहने वाला मिल गया तो खुश रहना। ना मिली तो हम फिर भी तुम्हारे है। ये सब बातें हैं दोस्तों जो दिल को छू कर और निकल जाता है। हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसमें शमी कपूर काम किया है, राइसी संगे पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाना है और ये है, ये गीत है, और मेरी मोहब्बत जवान रहेगी। मेरी मोहब्बत जवान रहेगी यानी कि मोहब्बत कभी बुढ़ाते नहीं है, उम्र चले जाते हैं दोस्तों लेकिन मोहब्बत जवान रहती है। ये हमारा पैगाम है रेडियो फाउन के माध्यम से, आओ सुना जाए।

और दोस्तों मेरी मोहब्बत जवां ही रहेगी। और ये है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और मोहब्बत भरी प्यार भरी लवली सॉन्ग यहाँ से हम और प्यार भरी खबरोगन सॉन्ग्स और कुछ यादें हम आप लोग को यहाँ से चलाते हैं कि कहते हैं समझाता ही नहीं वो मेरे अल्फाज की गहराई का, समझता ही नहीं वो मेरी अल्फाज की गहराई, मैंने हर लफ्ज कह दिया जिसे मोहब्बत कहता है। दोस्तों एंड ब्रोकिंग्स हार्ट शायरी यहां से हम आप लोग को एक दो सुनाते हैं। तुमसे मोहब्बत तेरी औकांत से ज्यादा की थी, तुमसे प्यार तुमसे मोहब्बत तेरी औकात से भी ज्यादा की थी। अब बात नफरत की है, सोच तेरा क्या होगा। माना कि मुझे प्यार करना नहीं आता, पर तू बता कि तुझे डील तोड़ना किसने सिखाई है। ये तो भी होता ना हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों रेडियो का। हम चलते हैं आशीष जी के एक रोमांटिक सॉन्ग है परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत है और चला जाए। फिल्म के नाम है प्यार का सौदा नहीं दोस्तों, प्यार का सागर। फन नहीं खती होंदत एन एनन सस्तख। आओ चला जाए सुनने को कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले क्या गाया है।

प्यार की जिंदगी देने वाली। दोस्तों कितने लोग कहते हैं, बोले जॉनी तू सिर्फ प्यार भरे गीतों को चलाते हैं, लेकिन हम अपने जिंदगी में बेवफा बहुत हमको मिला है और बेवफाई भी बहुत हुआ है दोस्तों। और जितने लोग बेवफाई के रास्ते से गुजरा है वो सब के लिए यहाँ पर हम कुछ बेवफा का शेर लेकर आया है और एक गीत भी लाया है। कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है, अंदाज वही है, बस अल्फाज नया लाया हूं, भूल तो जाऊं तुझे दोस्तों। और कहते हैं भूल तो जाऊं तुझे पर मेरे पास रहेंगे क्या कुछ, यानी कि बेवफाई का हम आपको शेर सुनाते हैं कि कितनी लोग बेवफा के रास्ता से भी गुजरा है, ठोकर लगा है, दिल टूट गया है, वो सब के लिए भी यहाँ पर हमने कुछ रखा है। अब जुदाई का सफर को मेरे आसान करो, अब जुदाई का सफर को मेरे आसान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मेरे ख्वाब में आकर और ना परेशान करो। और तो क्या था बेचैनी के लिए अपने आंखों के ख्वाब बेच आई है हमने। तो दोस्तों ये सब एक हम एक दो बेवफाई का गीत आपको हम सुनाते हैं, आओ सुना जाए।

और तेरा मासूम चेहरा भूल जानी को काबिल नहीं है। और दोस्तों मोहम्मद अजीज ने इस गीत को गाया है और कहते हैं, कुछ ऐसा हंसने भी जिंदगी में होता है, कुछ ऐसा हादसा भी जिंदगी में होता है कि इंसान बच तो जाता है मगर जिंदा नहीं रहता है। दोस्तों ये तो भी कभी कभी बात होता है ना कि प्यार में अब ये शामिल करना है, वो सच कहना है, वो सच कहे ना कहे हम अतबार करना है। तो ये सब बात है दोस्तों। इस गीत जो है, इस गीत को इस फिल्म में सुनील दत्त और माला सिन्हा ने काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: तो यहां से कुछ रीमिक्स सॉन्ग भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे और कुछ भोजपुरी रीमिक्स सॉन्ग भी सुनाएंगे, कुछ बॉलीवुड रीमिक्स सॉन्ग हम सुनाएंगे। आप लोग को सबको तो पता है लॉलीपॉप के जो गीत है भोजपुरी, वो गीत तो आप लोग को पता है, लेकिन यहां एक रीमिक्स सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं। और हमारा तार के नंबर है दोस्तों 07 3 6 5 22 4 0, रेडियो फाहुन का तार के नंबर है, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

और कमरिया करे लप्पा लोप और लोली पोप लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों के चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बामी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान। कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे। कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। दोस्तों कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और अगर झलक दिखलाएगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

और दोस्तों तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ, तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया, लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है, कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम, जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा, ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम। और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटा है, वो परमा श्री मोहम्मद रफी लपेटा है, शामी कपूर से आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम डोर जॉनी नंबर 1।

और बदन पे सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रैक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्ट्रांस, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमेक सॉन्ग कहते हैं, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिट इज अ टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स। एक नोग रिमिक्स ड्राए मेंस। तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

0: दोस्तों, डम डम डम डम, और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा, डम मारो दम था। हाँ, कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे, कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो, तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं, और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों, ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।
1: रुक रुक रुक

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आप लोग को आज हम कुछ गर्मा गर्म हॉट वॉर्म सॉन्ग सुनाएंगे। हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहना यूलिमुख वेल में जिखान स्विंग और न खाली स्विंग करियो, नाच सके झूम सके है। और फरखेट इट ओक ऑन्स टू बेल वर ए नगिन मन डोले मेरा और टंडोले भी है। दोस्तों हम जरूर जलते हैं, हम कहां जलते हैं, महबूबा की ओर। महबूबा क्या करते हैं,

दोस्तों मोफी के नाम थे शोले शोले एन शोले 1975 का सुपर हिट फिल्म थे। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगते हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनीत इरफान, वहां सामा खनीत दुख।

और क्या क्या क्या क्या खूब लगते हो, और वो खाली खूब नहीं सुंदर भी लगते हो।

0: मूवी, मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा, ये पर्दा, और हटा कर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना,
1: पर्दा हटा दो,

It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आप जानते हैं, आज नाचना जरूर।

0: और मैंने भी राह रहेरी। उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहाँ चलते हैं, रेडियो फाउन में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ। और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shot Care while on the beat.
0: And beat.

मत होगी। एंड दिस इज अ रीमिक्स सॉन्ग। आओ चलते ओरिजिनल, ओरिजिनल में कैसे है।

और मेरी नसीब में तू है कि हम है। रमता जोगी रमता जोगी रमता जोगी।

रमदान योगी, रमदान योगी के बाद हम और कहां जाते हैं, और कहां जाते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टर्क तो बेंस और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप में मत चलना,

और छैया छैया के बाद हम चलते हैं। अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना चाहिए, हम बताते हैं क्या करना चाहिए।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। चाहे आपके परदेसिया यहां हो, दनहाख में, अमस्टरडम, यूट्रेख्ट, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। दिस इज जॉनी नंबर वन प्राइम टाइम।

Oh.

परदेसिया परदेसिया इन परदेसिया परदेसिया अब क्या होगा दैट इज अनफर।

और अनीसी अनीसी अनीसी और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह नहीं चिमेंसी और होते हो पेज कभी किसी को चूम नहीं लेना किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

और ओठों पे ऐसी बात ही, और ओ बात क्या है दबा के चली आई। और उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, और ओ मेरी महबूबा।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

जैसे हमने बताए हैं कि आज कुछ हम आप लोग को सरनाम के गीत सुनाएंगे। तो बोलिए बैठक गाना जॉनी अतीस आलस ऑल इन वॉन्ट। आप जानते हैं प्रोग्राम हमारा कुछ अलहदा होता है, तो कभी कासिको हो जाता है, तो कभी फिजी का सॉन्ग हो जाता है, तो कभी मॉरिशियस का हो जाता है, तो कभी भारत इंडिया का भोजपुरी हो जाते हैं, और कभी तो हो जाते गयाना का, त्रिनिदाद का, तो कभी सोका हो जाता है, तो कभी चटनी हो जाता है, और कभी बैठक गाना हो जाता है, और कभी कभी तो बॉलीवुड तो चलते ही रहते हैं। तो आज आप लोग को कुछ अलहदा सॉन्ग हम सुनाएंगे, और ये सब हैगा हमारा सुरिनामी गीत है एमी खरासी के, या एमी खरासी नहीं, जितने लोग आए हैं और ये गीत को आपको हम सुनाते, आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में हैं, चाहे जोन ऐसन देश में हैं, लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो, जब अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा, नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो, तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की, तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लर्च, तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं, तो हमारे क्लर्च से पता चल जाता है कि हम kan kan dosten ondanks dat u gaat zeggen ik ben geboren in Nederland, u gaat zeggen ja ik ben van hier, ik ben van daar, maar oorspronkelijk heel veel mensen zeggen je bent van India. Nee, ja, nou mijn voorouders wel, en daar mag je zeker trots op zijn, mensen, zo gaat het toch. U mag het zeker trots op zijn, to Suriname zo aanchamapluku zunaenge, aur iske baad hum kya sunayenge dosto, aao ek aur zuna jaye met ya गार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की, ये सॉन्ग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओंस कलाकार, सुरनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं, और इस गीत इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मेंज़ en laten we even gaan luisteren. Het is heel mooi met voice of een virus Uditram, Nisha Madaren, Auro Amadali, Surinder Sutal, Faris Barsati en Yadgar Orchestra gestaan. Je giet ko je sab gaiet he met alles drop en dran. Chutney masala lagaak raus na jij.

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। जब अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खेलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खेलावन इज ऑन्स टॉपर, एन फॉर द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन्स सरनामी हैव गेसोन। एंड लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिस राम खेलावन।

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunya mein nahi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We hebben ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamara sarnami ke bhasha wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ऑनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो Den Haag का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरिनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे देनहाख के रबीन बलदेव सिंह हैं। मैं से वहाँ नार ओन से फॉलोस्लीत या दैट मुट ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरिनाम से फॉलोस्लीत इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरिनाम से फॉलोस्लीत को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और बेन से ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, agar je kuch apna khun mein hai, apna shareer mein hai, to ye sab geet jo hai, to aapko jhakjor dete hai ki hamara desh Suriname to apna hi desh hai, jahan pe hamara janam bhoomi hua hai, lekin sab log ko wo feeling nahi hai, lekin jitni log ke aapko feeling hai, to hum chalte hai एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सूरीनाम देश में आए हैं वो भी एक हम रख देते हैं।

0: Blue Wonder. 100% krachtig reinigen, 100% geur. Wonderbaarlijk krachtig.
1: Yaniki Guru Dat Kala Singh bhi ek Surinam ka aur bahut bada kalakar the. तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्त कला सिंह क्या है, कौन था. तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सनाम के लड़के.

पुराना कलाकार है गुरु दत्त कला जीन का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज की नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम की, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौवन क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपन स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट में से, दैट इज निमत अंदर्स दन उनसे एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मक्का सच्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरना

0: एवरग्रीन किशोर कुमार
1: और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उदित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊं? क्या बात है।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक आपको सुनाइए लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है? आप सोचिए और इत्मीनान से सुनिए, आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे, कहीं प्यार ज़्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना, मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। निगती फिर सिर्फ तकन 174 का ये गीत मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए, क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में? अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने। चलो मिल के सुनते हैं।

रफी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। यह शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: वाह
1: क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में यह शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। VVV.FM.NL पर आप चुन हैं, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

था।

वाह, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, अगर होना था जरूर। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर निकली फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में, और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला पंकज उदास ने गाए हैं तो लोगों समझे वाह क्या बात है। लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ मुकेश जी ने पहले गाया था और बाद में पंकज उदास ने गाया। चलो हम आपको सुनाते हैं।

पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत आपको सुनाया गया फिल्म मोहरा में से निकाल कर। म्यूजिक डायरेक्टर है विजू शाह का कल्याण जी का बेटा है। आज वो कल्याण जी आनंद जो दो हैं दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कल्याण जी का बेटा है। विजू शाह के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाकई आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाएं इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है।

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार कर दे है करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन तीन शस्त्र 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं। जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का। जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से। जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। एवरग्रीन किशोर कुमार।

एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, हो सकता है आप इससे लुत्फ़ उठा रहे होंगे।